0: का उधार श्याम, तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें

0: दिस इज शालमली खोलगरे एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
1: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं, जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने, जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।

0: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की। मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से, इसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। कोई शख्स अगर आपके इस घर में आ रहा है, आंगन में आ रहा है, लेकिन उससे पहले उसकी कामयाबी के चर्चे चहुंओर हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर कोई चर्चा, कोई खास विषय जिस पर बहुत सारी बातें होने वाली है, तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमारे साथ आज जुड़ रहा है। विषय ही कुछ ऐसा है, विषय है खोजी पत्रकारिता, यानी कि इसके विषय में जानने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और कौन शख्स हैं, कौन शख्सियत हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। 1.5 दशक से ज्यादा समय से आप पत्रकारिता में सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं, और आपका जो अनुभव है, जी न्यूज के साथ आप जुड़े रहे हैं, न्यूज एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहे हैं, न्यूज चैनल है, डीडी न्यूज है, और तमाम सारे चैनल्स के साथ बहुत बड़ा अनुभव के साथ आप आते हैं, आप हैं। और वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं, तो न्यूज 18 में आप इस समय कार्यरत हैं। आनंद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सुनो शारदा 90.8 FM पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शारदा यूनिवर्सिटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया स्टूडेंट के साथ 1-to-1 गेट टूगेदर करने के लिए। अच्छा लगेगा मुझे अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर स्टूडेंट के साथ शेयर करने के लिए पत्रकारिता का।
0: बेशक सर, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, जानने की समझने की कोशिश कर रहा था, सीनियर जर्नलिस्ट आप हैं और आपका जो एरिया आता है वो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, तो सबसे पहले मैं सबसे स्टूडेंट्स के ब्याह पे यही जानना समझना चाहता हूं कि खोजी पत्रकारिता का जब जिक्र आता है, तो पुराने समय का हम जब जिक्र करें तो गुप्तचर हुआ करते थे, हनुमान जी का जिक्र आता है, तो वर्तमान समय में इस डेजिग्नेशन को कैसे हम परिभाषित करेंगे, किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को आप समझाना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं 2005 से क्राइम इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म कवर कर रहा हूं। तो जब मैं 2005 में इस फील्ड में नया नया आया था, तो एक चैनल के साथ मैंने इंटर्नशिप शुरू करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन फील्ड में आपको काम करने का किसी भी स्टूडेंट को मौका मिलता है, तो पहले तो उसके अंदर झिझक नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की।
0: क्या बात।
1: और उसके अंदर एक ऐसी डेयरिंग होना चाहिए कि वो किसी से भी फोन करने में, बात करने में, मिलने में हिचकिचाए नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं। क्योंकि आप अपने प्रोफेशन के लिए अगर किसी से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, या आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टाइमिंग या पर्सन, ये सब डिपेंड नहीं करता है, आपको अपना काम डिपेंड करता है। और उसके लिए आप किसी भी हद तक
0: जा सकते हैं,
1: जा सकते हैं और जाना भी चाहिए,
0: जाना चाहिए।
1: अगर आपको एक अच्छा मेहनती जर्नलिस्ट बनना है और आज के सिनारियो में अगर आपको वो सर्वाइव करना है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि इसके लिए आपको जुनून होना बहुत जरूरी है, चाहे आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में हो या
0: किसी भी फील्ड में,
1: स्पोर्ट्स में हो, एंटरटेनमेंट में हो, आप किसी में हो, बिजनेस में हो, आपको उस फील्ड में आपको
0: जुनून चाहिए, पागल
1: करना पड़ेगा आपको।
0: क्या बात है।
1: जब आप उससे प्यार करने लगेंगे तो जाहिर तौर पर अपना पूरा समर्पण उसके लिए देंगे।
0: क्या बात है। तो लिसनर्स, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ हमारा यही है कि बात जो निकलकर सामने आई है कि जुनून, पागलपन, जब आप प्यार करेंगे तो निश्चित तौर पर वो क्षेत्र भी आपको प्यार करेगा, लोग भी आपको बेशुमार प्यार बरसाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, मिस्टर आनंद तिवारी जी। बहुत अच्छे बड़े अनुभव के साथ आप आते हैं और खोजी पत्रकारिता के यूं कहें कि महारथी हैं। मैं हिंदी में बात कर रहा हूं और ये बातें कहीं ना कहीं हमें टच करती हैं। खोजी पत्रकारिता का जब जिक्र होता है तो जिक्र होता है गुप्तचरों का, जिक्र होता है हनुमान जी का, क्योंकि वो खोजी पत्रकारिता की ही वजह से पता लगा पाए थे कि सीता मैया कहाँ हैं। तो कहीं ना कहीं जो सर ने जिक्र किया कि एक जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, प्यार करेंगे जब आप अपने क्षेत्र से तो निश्चित तौर पर उसका जो रिवर्ट आता है तो वो काम आपको आगे लेकर जाता है। तो सर मैं आपसे एक बार फिर से आपका सुरुशादा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: जुनून पागलपन का आपने जिक्र किया, इस बात को मैं आगे लेकर यूं जाना चाहूंगा कि खोजी पत्रकारिता नो डाउट हिम्मत का काम है। उसमें कहीं ना कहीं एक डर घबराहट है, कोई जरा सा भी थ्रेट दे देता है तो मैं समझता हूँ कि इंसान डर सकता है, घबरा सकता है या अपने करियर को वहीं रोक देगा, स्टॉप कर देगा। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां आपके सामने भी आई होंगी, क्या कहना चाहेंगे आप सर?
1: देखिए बिल्कुल, जब 2006 में मैं एक चैनल से जुड़ा था, S1 उसका नाम था, वो दिल्ली NCR का काफी बड़ा फेमस चैनल था। तो एक रिटायर्ड ACP मुझे मिले फील्ड में। उस समय एक व्हाट्सएप के फोन तो होते नहीं थे, या तो लैंडलाइन से बात करिए या अब जो नॉर्मल फोन होते थे उनसे बात करिए। तो ऐसा अब बहुत इजी हो गया, जर्नलिज्म पहले नहीं था उतना 2005-06 में। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी के साथ एक ने चीट किया है और वो वर्ल्ड बैंक में अपने आप को बताता था। और वो उस समय जो UP में जो सत्ता थी उसमें वो टॉप के 10-14 ब्यूरोक्रेट्स में उसका बेटा था।
0: अच्छा।
1: तो मैंने अपने एडिटर को वो स्टोरी बताई, हमने कहा कि बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है और जो काफी ज्यादा डॉबरी वगैरह उन्होंने ले रखी थी। तो हमने वो लड़की का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करके वो स्टोरी ऑन एयर हुई और वो काफी चली, डिबेट शो टाइप में हुआ, मेरा लाइव हुआ। उसके बाद शाम को मेरे को फोन आना शुरू हो गए, बेसिकली पावर का मिसयूज जिसको कहते हैं, मतलब मेरे खिलाफ गाजियाबाद पुलिस से बहुत सारे फोन आए मेरे एडिटर को कि आपके रिपोर्टर को अरेस्ट करेंगे, फेक न्यूज चलाइए। तो हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स थे, हमारे पास तो विक्टिम था, हमारे पास सारी चीजें थी। और जैसा आपने बताया ना, वो डर उस समय मेरे अंदर नहीं था क्योंकि मैं तो उनके जहाँ पे वो लोग रहते थे हम वहाँ पे कैमरा लेके शूट करने चले गए, गार्ड्स के इंटरव्यू किए, अंदर नहीं घुसने दी, मतलब जो सारा टीवी का ड्रामा होता है वो हमने सारा करके दिखाया। उसमें
0: सबूत थे, आपके
1: सबूत थे, मतलब उसको आप टीवी की भाषा में आप ड्रामा हो सकते हैं, बेसिकली हमने एविडेंस कलेक्ट करे थे। उसके बाद वो केस बेस हुए, बहुत सारे थ्रेट कॉल आने लगे, मैं थोड़ा डर भी गया क्योंकि मैं जर्नलिज्म में नया इंटर्नशिप करके। मेरे एडिटर ने बोला कि तुम्हारी अगर न्यूज सही है तो डरने की जरूरत नहीं।
0: क्या बात है, क्या
1: उस समय बस मैंने एक दिमाग ये लगाया कि मेरा चैनल उस समय दिल्ली NCR का चैनल था, मुझे पता था कि ये न्यूज नेशनल कैसे बनेगी। तो मैंने एक मेरे सीनियर थे वो दूसरे चैनल में थे, मतलब देश का नंबर वन चैनल था उसमें थे, मैंने उनसे वो स्टोरी डिस्कस की शाम को स्पेशली फिल्म सिटी आके
0: जी।
1: उनको वो बड़ी कैचिंग लगी।
0: हाँ।
1: तो मैंने सारा रिसोर्सेज अपना उनको दे दिया,
0: ट्रांसफर कर दे दिया,
1: कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सारा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: सारा कुछ और सारी डॉक्यूमेंट जो थे फोटोकॉपी करके उनको दे दी
0: जी।
1: उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ, आप यकीन, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जो प्राइम टाइम शो आता है 8 बजे का, उसमें वो स्टोरी खुली
0: दूसरे चैनल पर। सर
1: दूसरे चैनल पे
0: जी
1: ऑन एयर हुई।
0: हाँ।
1: और उसके बाद मतलब शायद ही कोई मीडिया होगा दिल्ली NCR का जिसने वो स्टोरी फॉलो नहीं की। उसके बाद वो लड़का जेल भी गया जो था ब्यूरोक्रेट्स का, और फिर वो फैमिली हमारे चैनल्स में आई, उन्होंने हमारा थैंक्स करा, उनकी बेटी ने थैंक्स करा, उनके फादर ने थैंक्स करा कि आपकी स्टोरी से हमें ये बेस मिला। वो एक्चुअली वो जो मैंने स्विच करी थी स्टोरी वो मेरा अपना खुद का दिमाग था।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि उस समय मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, नया नया था जर्नलिज्म में, और फिर मुझे लग रहा था ये न्यूज अगर नेशनल नहीं बनी तो फिर बहुत सारे प्रेशर्स हम पे आएंगे और हम फिर मतलब एक मोरल डाउन होता है आपका, वो डाउन नहीं। और वो स्टोरी इतनी पिक हुई कि मतलब वो उसको
0: मैं समझ गया आनंद सर,
1: उसकी गूंज थी।
0: मैं आपको रोक रहा हूँ लेकिन मेरा जो सवाल करने का मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपकी स्टोरी से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं काम कर रहे हैं क्या सीख मिलती है। निश्चित तौर पर आपकी बात से उनको जरूर सीख मिलेगी कि आपको डरना नहीं है, धमकी भरे फोन भी

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो में आज मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप हैं मिस्टर आनंद तिवारी जी, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम न्यूज 18 इंडिया से, जो कि खोजी पत्रकारिता का क्षेत्र सर का है, उस क्षेत्र में बहुत महारत हासिल है। उनके अनुभवों को हम जान रहे हैं। निश्चित तौर पर जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं इनसे जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि इस फील्ड में अगर आप आ रहे हैं तो क्या करें क्या ना करें, ये जान लेना समझ लेना बहुत जरूरी। तो सर एक बार फिर से सुरोशादा 90.8 एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ आज आपसे मिलकर आपसे बात करके, अच्छा लग रहा है।
1: नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक हम लोग इंटरव्यू लेते थे एक तरीके से, दे रहे हैं ऐसा लग रहा है।
0: ये तो सर मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे चुना, अदरवाइज आपके पास समय कहाँ।
1: शारदा यूनिवर्सिटी का थैंक्स, जो उन्होंने हमें इतना ऑनर दे के यहाँ बुलाया।
0: थैंक यू सर। सर मेरी बातों बातों में बात निकल कर ये सामने आई कि क्या करें क्या ना करें। कुछ एथिक्स होंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, कुछ स्किल्स जो स्टूडेंट्स डेवलप कर सकता है, तो स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि जब इस फील्ड में आ रहे हैं, इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो किन किन बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़े।
1: देखिए, बिल्कुल आपने बहुत जायज सवाल पूछा है। सबसे पहले तो आपको मीडिया एथिक्स पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
0: जी,
1: फेक न्यूज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है आजकल, आपको उससे बचना है। आपको किसी लाभ लालच में नहीं आना है, आपको बिल्कुल खबर की डेप्थ तक जाना है, तब आपको उसको ऑन एयर करना है। ये नहीं कि आपको कोई ने खबर दे दी, उसका सर पैर नहीं पता, आपने उसको ऑन एयर कर दी। या किसी कोई कितने ही बड़ा रिनाउंड अफसर हो, कोई हो, जब तक आप उसकी डेप्थ नहीं पता करेंगे वो स्टोरी की, जब तक आपको उसको ऑन एयर नहीं करना चाहिए।
0: जी,
1: दूसरा बात होता है आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, भले चाहे वो क्राइम जर्नलिज्म हो या कोई और, आपको उसके बारे में जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा जो करंट न्यूज आ रही है उनको ज्यादा फॉलो करेंगे या उनका फॉलो अप रखेंगे, तो आप एक बेहतर जर्नलिस्ट बन सकते हैं। और जो अभी मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, जिनका अभी लास्ट ईयर है या जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, जो अभी यहाँ से पास आउट होकर निकलेंगे या कहीं जॉब करेंगे, उनको बेसिकली अभी से एक अपना गोल और एम तैयार करना पड़ेगा कि उन्हें करना क्या है बेसिकली।
0: जी,
1: और जब वो ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे इस फील्ड में ही काम करना है, मुझे क्राइम जर्नलिज्म ही करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसमें आपको पुराने बहुत सारे केसेस है जिनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और मुझे, मैं तो कहता हूँ कि आपको आजकल इतनी सारी वेब सीरीज आ रही है जो रियल स्टोरी पे बनी हुई है, आपको उनको देखना चाहिए। उससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है जो रियल स्टोरी पे बनी, लोगों की डॉक्यूमेंट्री बनी, बायोग्राफीज बनी है, आप उनको देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि वो बंदा क्या था, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, वो कैसे क्राइम की दुनिया में आया। जैसे हम लोग अभी सडनली हमने बहुत सारी सीरीज करी न्यूज 18 ने, शायद न्यूज 18 पहला ऐसा चैनल होगा देश का जो देश के करीबन 8-9 गैंगस्टरों के घर गया। मैं खुद होके आया हूँ। जब हम गए तो हमें पता चला कि वो जो गैंगस्टर थे उनका एक पार्ट क्या है लाइफ का, दूसरा पार्ट
0: क्या है,
1: क्राइम की दुनिया से अलग वो क्या है। तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, आप फोन पे जर्नलिज्म नहीं कर सकते। आपको फील्ड पे जाना जरूरी है, लोगों से मिलना जरूरी है, जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट बनाएंगे उतना ज्यादा जरूरी है। और आपको अपने फील्ड के बारे में, मुझे लगता है जितना ज्यादा सीखेंगे उतने ज्यादा आप अच्छे जर्नलिस्ट बनेंगे आगे आगे।
0: बेहतरीन सर, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे लिसनर्स तक, हमारे श्रोताओं तक, हमारे दोस्तों तक, हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचा दी। मुझे लगता है कि इन बातों को अगर वो गांठ बांध लेंगे तो निश्चित तौर पर इस फील्ड में कहीं रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। सर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर की। कभी कभी शिकायत तो होती होगी जब आप देखते होंगे कुछ इंटर्न्स आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हथेली पर सरसों तुरंत उग जाए। आपको कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी भी दिखती होगी कि कहीं वो ललक है, लगन है या नहीं है। तो वो जब आप मिलते हो स्टूडेंट्स से, तो उस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मतलब मैं इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं मानूंगा। मतलब आज का स्टूडेंट जो है मास कम्युनिकेशन का, उसको बहुत सारी चीजें जो है वो फास्ट चाहिए।
0: जी,
1: हम लोग जब इंटर्नशिप करते थे तो हमने 6-6 महीने इंटर्नशिप किए फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम अब तो मतलब आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं।
0: जी,
1: पहले रिसोर्सेज उतने नहीं थे जिसमें आपको काम करना होता था। अब के इंटर्नशिप क्या होते हैं, उनको बहुत सडनली 1 महीने के इंटर्नशिप में अगले महीने उनको नौकरी चाहिए। और वो बहुत कम ही स्टूडेंट मैंने ऐसा देखा है जो बहुत दिल से सीखना चाहते हैं चीजों को। हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे इंटर्न्स आते हैं, हमारे साथ उन्हें फील्ड में भी भेजा जाता है, तो उसमें 10 में से केवल 2 इंटर्न्स ऐसे होते हैं जहां हमें जहां लगता है कि जो सीखना चाहते हैं, जो हमसे कुछ पूछना चाहते हैं,
0: उन्हीं को नौकरी ऑफर करते हैं।
1: बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो बस वे बोलते हैं कि सर हमारी शिफ्ट खत्म हो रही है, हमको घर जाना है, हमको मेट्रो स्टेशन पर ड्रॉप करा दीजिए। तो वो लगता है कि वो सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब मैं और भी यूनिवर्सिटी में जाता हूं तो वहां पर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा जो जिनको अपना बेसिक फील्ड का नॉलेज होना चाहिए जो नहीं होता है,
0: नहीं होता।
1: और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने फील्ड के नॉलेज से ज्यादा होता है, मतलब वो सीखना चाहते हैं। तो मैं स्टूडेंट को मतलब उनका मनोबल नहीं गिरा रहा हूँ, मतलब बेसिकली बोल रहा हूँ कि अगर आप जर्नलिज्म की फील्ड में आए हैं, आपको अगर जर्नलिज्म ही करना है या पीआर एजेंसी में जाना है या क्रिएटिविटी में जाना है
0: तो तैयार होकर आइए,
1: तैयार होकर आइए,
0: माइंड मेकअप करिए।
1: और अगर आपको कोई भी न्यूज चैनल या अखबार या छोटा डिजिटल प्लेटफॉर्म या आपको इंटर्नशिप का मौका दे रहा है तो आप वहाँ बहुत ज्यादा सीखिए, आपको सिखाएगा नहीं बड़े चैनल्स में,
0: बिल्कुल
1: आपको खुद सीखना पड़ेगा, आपको वहाँ पे सीनियर से जाना पड़ेगा कि आउटपुट है इनपुट है असाइनमेंट ऐसा होता है ग्राफिक्स इससे बनते हैं वॉइस ओवर ये रूम है। जब आप खुद सीखेंगे तो सामने वाला भी आपको सिखाने की कोशिश करेगा, नहीं तो वो तो आप बोलेगा 8 घंटे की शिफ्ट आप करिए और घर चले जाइए।
0: सही बात है,
1: वो आपको सर्टिफिकेट थमा देंगे एक महीने।
0: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। डियर स्टूडेंट्स, मैं तो ये कहूंगा कि इन बातों को जान लीजिए, समझ लीजिए, अपने जहन में बैठा लीजिए, अप्लाई करेगा तो निश्चित तौर पर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी ही नहीं। वक्त अगर आपने अभी देखा तो निश्चित तौर पर आपका वक्त नहीं आएगा, लेकिन जब आप वक्त नहीं देखेंगे तो एक ना एक दिन आपका वक्त जरूर आएगा। दुनिया आपको सलाम करेगी, आपके काम की पूछ होगी। और इन बातों का यहां डिस्कशन करने का मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इन बातों को जान लीजिए, समझ लीजिए। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं अपने गेस्ट से कि ताकि उन बातों को आप समझ पाए जो आप अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं। वक्त है यहां पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और मेरे साथ आनंद तिवारी जी जुड़े हुए हैं न्यूज 18 से। बहुत सारी बातें हो रही है, बातों का जो सिलसिला लगातार जारी है सिर्फ सुरु शादा 90.8 FM पर।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में मेरे साथ आज एक खास मेहमान है मिस्टर आनंद तिवारी जी, जो कि न्यूज 18 से ताल्लुक रखते हैं। बहुत पीछे बहुत बड़ा अनुभव है, अलग अलग चैनल में काम किया है और खोजी पत्रकारिता में आपकी महारत हासिल है। बहुत सारी बातें मैंने यहाँ की, इसलिए बातें की ताकि एक खूबसूरत जवाब की मैं उम्मीद रख रहा था, उससे भी बेहतरीन जवाब हमें मिले। सो मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं तो उन बातों को जब आप अपनाएंगे तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। सर, कभी कभी इस क्षेत्र में जब आप पत्रकारिता के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं डर घबराहट जैसे उसके बारे में आपने बताया कि वो सारी चीज़ें पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी आपके सामने दिक्कतें आई होंगी, आपको लगा कि मैं आज बच ही गया, थैंक गॉड, अदरवाइज तो आज मेरी जान चली जाती। इसके अलावा दूसरी बात भी मैं इसमें जानना चाहूंगा कि जब कोई विक्टिम होता है तो आजकल हम देखते हैं कि किसी को फेस दिखा देते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि भाई फेस नहीं दिखाना चाहिए, एथिक्स में है। तो कुछ ऐसी बातें जो हमारे स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए।
1: देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप जो भी जुबिनाइल होगा उसका फेस नहीं दिखा सकते हैं, चाहे वो विक्टिम हो या नहीं हो, इनोसेंट हो। दूसरा, जो रेप विक्टिम होते हैं या जो सेक्सुअल असॉल्ट के जो विक्टिम्स होते हैं, आपको उनका फेस कभी नहीं दिखाना चाहिए, ना उनका नाम। सुप्रीम कोर्ट की तो ये तक गाइडलाइन है कि आप उनके रेडियस के आस पड़ोस के घर के वीडियो फोटो भी नहीं दिखाएं, उनके फैमिली मेंबर्स के किसी के फोटो नहीं दिखाएं। तो बेसिकली रेप और या सेक्सुअल असॉल्ट की खबरों में ये बहुत बचना चाहिए। इसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटना पड़ सकता है और आपके पर्सनल जो आपका प्रोफेशन है उस पे भी आपको
0: हाथ धोना पड़ सकता है।
1: तो बेसिकली इसमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा स्टूडेंट्स को कि जब भी कोई रेप विक्टिम्स हैं या सेक्सुअल असॉल्ट वाले विक्टिम्स हैं, उनके इंटरव्यू करने भी अगर आप जाते हैं तो कोशिश करिए कि उनका फेस ब्लर करें या उनका फेस ना दिखाएं। आप बैक साइड कैमरा लगा के और फिर उनका इंटरव्यू करें जिसमें उनका बैक केवल पीठ दिखे और उनकी वॉइस जाए
0: जी।
1: और कोशिश करें कि उस उनमें उनका नाम नहीं पूछें, उनके फैमिली के बारे में नहीं पूछें, कोई ऐसी चीज नहीं पूछें जिससे कि उनकी फैमिली की आइडेंटिटी रिवील हो। वो एक्चुअली कोर्ट ऑफ कंडक्ट भी है और होना भी नहीं चाहिए, मतलब वो। बाकी दूसरा, आपने बताया जब आपको ऐसी जगह पे रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि लाइफ थ्रेट है या आपकी जो इक्विपमेंट है उनको चोट पहुंच सकती है,
0: जान का खतरा हो सकता है,
1: जान का, तो आपको वहां पर ना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। आपको बहुत भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो इन्फॉर्मेशन देना है अपने चैनल्स को, विजुअल दिखाना है। आप किसी ऐसी जगह जाके विजुअल दिखाई जहाँ पे आपका पुलिस प्रोटेक्शन हो या पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हो। जैसे हम भी राइट्स कवर करने जाते हैं तो हम उसी एरिया तक रहते हैं जहाँ पे कि पुलिस प्रेजेंस हो, पुलिस फोर्स, क्योंकि वो मीडिया को हार्म नहीं करेगी। कई मौके ऐसे आते हैं जब पुलिस वाले भी पत्रकारों को आपने देखा होगा कि उनको हार्म दौड़ाते हैं, लाठी बढ़ाते हैं। तो आपको वो देखना पड़ेगा, वो आपका दिमाग आपको ओपन रखना पड़ेगा। अभी वक्त की नजाकत क्या, उस हिसाब से आपको जर्नलिज्म करना। ये नहीं कि आप जुनून में अंदर घूम गए, उस समय पत्रकारिता में वो
0: शहीद हो जाएंगे।
1: ध्यान रखने वाली बात है, इक्विपमेंट का भी ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। तो जब राइट्स वाली स्थिति आए तो आप एक ऐसी जगह पे जाके लाइव करें जहां से कि आप व्यूअर्स को वो विजुअल भी दिखा सके और अपनी बात भी रख सकते हैं और खुद भी सेफ होके अपना रिपोर्टिंग करें, चाहे वो आप बाढ़ की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ या जो दिल्ली में या और भी जगह जो दंगे हुए उनकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत बड़ी आग लग गई हो, या आप कोई ऐसी जगह चले गए हो जहाँ बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है, पब्लिक भड़क सकती है,
0: ध्यान रखने
1: ये आपको रखना पड़ेगा। ये ऑफिस भी लगातार बताता है, आप न्यूज चैनल्स भी एथिक्स के बारे में बताते हैं और ये रिपोर्टर को फील्ड में या कैमरामैन जो आपके स्टूडेंट जो कैमरा पर्सन बनना चाहते हैं आगे, उनका इंटरेस्ट वीडियोग्राफी में है, स्टिल फोटोग्राफी में है, तो उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से करना है। फोटोग्राफी में भी ये कि आप माइनर्स के फोटो ना लें, छोटे बच्चों के फोटो ना दिखाएं चैनल्स में। अभी बहुत सारी न्यूज में ऐसा होता है जब छोटे बच्चों के फोटो दिखा दिए जाते हैं, सोशल मीडिया बढ़ चढ़ कर दिखाता है, रेप विक्टिम के फोटो दिखाता, वीडियो दिखाता।
0: सर, आप इस बात को हम को रिलेट कर सकते हैं। अभी शिवाय की घटना घटी थी, उस बच्चे का पिक्चर नहीं आना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं सोच रहा हूँ तो आप मुझे भी करेक्ट करेंगे, क्योंकि वो अगर पिक्चर आएगी तो हो सकता है कि वो दिक्कतें उसके आने वाले फ्यूचर में भी हो सकती हैं, क्योंकि शिवाय का ग्वालियर की घटना थी, बच्चे का अपहरण होता है उसके बाद वो मीडिया के सामने होता है।
1: बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, किडनैपिंग की तो खबरें नहीं दिखाना चाहिए। किडनैपिंग की न्यूज तब आपको दिखाना चाहिए जब या तो बच्चा रिकवर हो जाए या एक्यूज जब अरेस्ट हो जाए, क्योंकि उससे बच्चे की लाइफ पे थ्रेट हो सकता है। आप एक न्यूज चला देंगे वो पूरे देश में चली जाएगी, किडनैपर्स डर के हो सकता है बच्चों को मार दें। और बहुत सारे ऐसे केस में हुआ है जब किडनैपर्स तुरंत जब उनको लगता है कि मीडिया में न्यूज आ गई तो वो उस बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जिसमें विक्टिम्स की मर्डर कर दिए गए हैं, बाद में उनकी डेड बॉडी रिकवर होती है
0: जी।
1: तो ये पुलिस भी इसमें बहुत कोशिश करती है कि मीडिया को सारी चीजें लीक ना हो, और अगर आपकी भी एथिक्स है कि आपको ऐसी चीजें नहीं चलाना चाहिए जिससे कि कोई की लाइफ थ्रेट आपकी न्यूज से अगर हो रही है तो।
0: बहुत अच्छा सर। लिसनर्स कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये कि इन बातों को जान लीजिए, समझ लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, प्यार का एक माहौल बना के चलेंगे, सब अच्छा होगा, बेहतर होगा। और जो ये बातें बताई गई हैं इन बातों को जरूर जानिएगा, समझिएगा। और वक्त का इशारा हो चुका है, वक्त का जब इशारा होता है तो मैं होता हूँ 9:11। सर दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स तक, स्टूडेंट्स तक पहुँचाई, इस बात के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सर।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके स्टूडेंट्स का भी, आपके रेडियो स्टेशन का भी।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। 01204060205 पर कॉल कर आप हमें बता सकते हैं कि ये चर्चा, ये वार्ता, ये इंटरव्यू कैसा लगा। मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: चलो अब तुम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली, अब टेंशन वेंशन छोड़ दे, बच्चा हो जा फुल।

हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: महावारी एक महिला के संपूर्ण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक कुदरती घटना है, फिर भी ये दुनिया भर में लाखों महिलाओं के लिए नियमित तौर पर और भयंकर रूप से उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य में रुकावट बनती है।
1: महावारी एक ऐसी घटना है जिसका सामना महिलाएं और लड़कियां मानव जाति की शुरुआत से ही करती आ रही हैं। हालांकि यही मानव जाति के लगातार अस्तित्व में बने रहने का कारण भी है। फिर भी एक महिला की महावारी के साथ बहुत ज्यादा शर्म और संकोच जैसे भाव जुड़े हुए हैं।
0: महावारी को अक्सर खून, अशुद्धता और घृणा से जोड़ा जाता है, जो कि सरासर गलत बात है। इसी कारण से महिलाएं अपनी महावारी के बारे में बात करने में संकोच महसूस करती हैं।
1: इसलिए लड़कों और लड़कियों दोनों को ही महावारी और मासिक चक्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। महावारी से संबंधित गलत अवधारणाओं या मिथकों को दूर करने में लड़के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: राम राम, दोस्तों, आप सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:11 हो चुके हैं, 19 तारीख है, हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेते हैं। फिलहाल मौसम का जो मिजाज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द मानसून हमारे सामने होगा, आसपास होगा, लेकिन इस वक्त ग्रेटर नोएडा में यानी कि 19 जून को आज की मैं बात कर रहा हूं, मुख्य रूप से आसमान में बादल छाए रहेंगे और अधिकतम यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम यानी कि 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यानी कि अगर 33 भी हम जाते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आसपास हमारे गर्मी बनी रहेगी। तो ऐसे मौसम में अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा, पानी भरपूर पीजिएगा, नींबू शिकंजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ पेय पदार्थ यानी कि भरपूर आप लीजिए। फल अगर आप ले रहे हैं तो वो फल का आप खा सकते हैं, तरबूज है, खरबूज है, ये सारी चीजें लेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। पानी की मात्रा आपके शरीर के अंदर प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, है ना। गुड मॉर्निंग। और वहीं उमस की अगर मैं बात करूं तो 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और सूर्योदय हुआ आज 5:22 पर, सूर्यास्त होगा 7:20 पर और वायु गुणवत्ता की अगर मैं बात करूं तो 94 यानी कि मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है AQI। हम चाहते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होता रहे यानी कि अच्छी आबो हवा बनी रहे हमारी ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध नगर जिले की। तो हरियाली का हमें ख्याल रखना होगा, भारतवर्ष में हरियाली का ख्याल रखना होगा। एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएगा और रायता ना फैले तो इस बात का ख्याल रखेगा भाइयों बहनों, अपनी बीबी की माँ के नाम भी एक पौधा जरूर लगाएगा, वरना भाभी कभी भी नाराज हो सकती है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूँ गगन आपके साथ।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

मेहरबा माशाल्लाह ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ 01204060205 अर्थात 120 शहर का एसटीडी कोड लगाना ना भूलेगा। नंबर है 4060205 जाना पहचाना जो हर रोज मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। इसके जरिए आप अपने मन की बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल देश की मन की बात यह कि योग के बारे में हम बात करना चाहते हैं। योग करेंगे तो निरोग अपने आप को रख पाएंगे। भारत की खूबसूरती है कि 21 जून को हमने इस दिन योग दिवस मनाने का फैसला किया और भारत की देन पूरे विश्व को यही देन है और एकजुट रखने का एक सबसे अच्छा मौका है, योग करने का अच्छा मौका है, संकल्प लेने का अच्छा मौका है जहां कोई विकल्प ना हो। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार हम लोग मनाने जा रहे हैं और इस बार की जो थीम है स्वस्थ बुढ़ापे के लिए दीर्घ आयु यानी कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो इस तरीके से बढ़ती उम्र में शारीरिक गतिशीलता, मानसिक दृढ़ता और बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में योग के महत्व पर केंद्रित है इस बार की जो थीम है। और इस बार क्या खास होने जा रहा है, इस बार खास ये होने जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम में जो नेशनल प्रोग्राम है वो होने जा रहा है कोलकाता के राज रोड पर और वहाँ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। तो लक लक बधाइयां, बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अनुसार बात निकलकर ये सामने आ रही है कि देश विदेश में बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जिसमें हाल ही में एक लाइव सत्र में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेशन अपना दर्ज कराया। लक लक बधाई और कह रहे का आशय यही कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं योग करिए, अपने आप को निरोग रखिए और सच बात तो ये कि अगर आपने दौलत कमा

ली, लेकिन स्वास्थ्य आपका सही नहीं है तो रुपया पैसा धीरे धीरे खर्च होता चला जाएगा अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में। तो ईश्वर से खुदा से यही मांगेगा, दोनों मांगेंगे, मतलब निरोगी काया और पैसा भी। शाबाश शाबाश, हाँ जब मालिक देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। गुड मॉर्निंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाँ, एक नाक से लेना एक नाक से छोड़ना, ये क्या है? इसी को योग कहते हैं। गुड मॉर्निंग।
0: अनुलोम विलोम देसी भाषा में कहा जाए, बहादुर ने अगर थोड़ा सा इसको समझाए, विस्तार में समझने के लिए एक्सपर्ट के पास जाइए, एक्सपर्ट को फॉलो करिए। और बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं, रामदेव बाबा का कार्यक्रम होता रहता है, पतंजलि आश्रम से आप जुड़ सकते हैं, तो जो भी जहां से भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। और टीवी चैनल्स पर भी हमने देखा है कि सुबह सुबह बहुत सारे योग के कार्यक्रम आ रहे होते हैं, अगर आप उसका अनुसरण करेंगे।
1: ये क्या होता है
0: फॉलो?
1: हाँ, ये कहो ना हिंदी में, पीछा करना, मतलब सीखो, ऐसे सीखो।
0: हाँ बिल्कुल, ऐसे सीखो। तो निश्चित तौर पर आप अपनी जिंदगी में चार चांद लगा सकते हैं, तनाव से मुक्त अपने आप को रख सकते हैं, परीक्षा में चार चांद लग सकते हैं। कैसे? पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, तनाव फ्री अपने आप को रखिए। 21 जून यानी कि 21 जून रीनीट की जो परीक्षा है वो पुनः आयोजित होने जा रही है, और इसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे स्टूडेंट्स को। और परीक्षा बहुत कड़ी निगरानी में की जा रही है, टेलीग्राम पर पाबंदी रहेगी, और इसके बारे में भी विरोध दर्ज किया गया, लेकिन जो हमारे पास वैलिड पॉइंट है उसके साथ ये बात हमारे सामने आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि योग 21 जून को, और पूरा विश्व इसको बड़े धूमधाम से मनाने जा रहा है, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कोलकाता में होंगे। और इस बार कुछ खास होगा, अलग होगा। हुगली नदी में 500 से ज्यादा नावों पर एक साथ योग करने की तैयारियां चल रही हैं।
1: हाँ तो क्या करें? एक काम करते हैं, नावों का ठेका ले लें, भविष्य में संभावना है रोजगार की, मतलब स्टार्टअप।
0: ये बहादुर बहुत आगे जाएंगे।
1: देखा बेटा, मेरे साथ तुम रहोगे तुम भी ऐश करोगे।
0: हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। आने वाले इस योग दिवस की बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यही बातों को ध्यान में रखते हुए हम पहुंचेंगे रामलाल वृद्धाश्रम कल सुबह 9 बजे। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप हमें वहां मुलाकात कर सकते हैं, और हमारा योग का एक वर्कशॉप होगा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

वेलकम बैक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 9:40 हो चुके हैं, 19 तारीख है, हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि रीनीट की जो परीक्षा है वो 21 जून को होने जा रही है और इसके साथ ही साथ 21 जून को पूरे भारतवर्ष को पूरे विश्व को इंतजार रहता है योगा डे का, योग दिवस का। और यही वजह है कि हम भी मैदान में उतर रहे हैं स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर। हम एक विशेष कार्यक्रम चलाते हैं जिसका नाम है सेहत सही तो लाभ कई। यकीन मानिए कि अगर आप तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं तो दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी आप ही हैं, है ना। सेहत का ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते चले जाइए। कोलकाता के रोड पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वहां पर योग का कार्यक्रम होने जा रहा है और वहां नावों पर योग होगा, खास होगा, अलग अंदाज होगा। ये तो रही एक बात। और इस वक्त जो दौर चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, वो हम सब जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप का जो जोरों शोरों से आगाज हुआ, जोरों शोरों से लोग उसको देखते हैं, मतलब हाइलाइट्स लोग देखते हैं, लोग बन ठन के सच के वहाँ जा रहे होते हैं, किसी की रील वायरल हो जाती है, किसी का एक फुटेज वायरल हो जाता है, रातों रात वो स्टार बन जाता है, चाहे वो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, मेल हैं, फीमेल है, है माशाल्लाह क्या क्रेज़ है, क्रिकेट से भी ज़्यादा क्रेज़ है फीफा वर्ल्ड कप का। चलिए, हम चाहते हैं कि अच्छा हो, बेहतर हो और जो खेल भावना है वो हर जगह बनी रहे। छोटी छोटी बातों पर हम देखते हैं कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन उन बातों से खिलाड़ियों को दूर रहना चाहिए और अपने लिए, अपने देश के लिए बस जी जान लड़ा दीजिए और फिर देखिएगा बल्ले बल्ले होगी फीफा वर्ल्ड कप में। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 21 जून को दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो नीट अभ्यर्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बसों में मुफ्त यात्रा, ऐसे दिल्ली सरकार कह रही है। और री नीट की जो तैयारी है उसको ध्यान में रखते हुए वायुसेना ने यानी कि एयरफोर्स ने 4 दिन में लगभग 200 से ज्यादा उड़ानें भरी हैं। तो सोचिए किस तरीके से निगरानी होने जा रही, किस तरीके से पेपरों को सुरक्षा की दृष्टि से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। और नीट का एग्जाम जो है वो तय शेड्यूल पर ही होगा। NTA ने ये आप लोगों से अपील की है कि नियम कायदे कानून के साथ आप आगे बढ़ें, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको मिल रही हैं। और जो टाइम है उसमें 15 मिनट स्टूडेंट्स को टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल सुरक्षा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनुशाता 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में ना उसके 56 मिनट हो चुके हैं, 19 तारीख है, और क्या है खास उसके बारे में जान लेते हैं। खास बात यह कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें की, रीनीट के बारे में बात की, 21 जून यानी कि योगा दिवस के बारे में बात की, हमारे आसपास क्या खास हो रहा है उसके बारे यानी कि मौसम के मिजाज के बारे में भी मैंने बातें की। अब बात निकल कर ये सामने आ रही है कि ग्रेटर नोएडा में क्या खास हो रहा है उसके बारे में भी जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सुनने में आ रहा है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो को हरी झंडी मिल चुकी है यानी कि NOC मिल चुकी है रेलवे बोर्ड से। तो इस बात के लिए लख लख बधाई, बहुत बहुत दरी दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो सिटी का नेटवर्क है यानी कि बस की मैं बात कर रहा हूं, सिटी को कई सारी बसें मिली हैं, तो जिसके वजह से यूं समझ लीजिए कि टोटल जो आंकड़ा है वो मेरे पास है, 115 इलेक्ट्रिक बसें शुरू हो चुकी हैं। तो इस बात के लिए भी लख लख बधाई, बहुत बहुत दरी दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा फर्ज बनता है सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, शासन प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। मसलन करना क्या है, साफ सफाई का ख्याल रखना है, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, और पेड़ पौधों का ख्याल रखें, एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएगा, बारिश शुरू होने वाली है तो ऐसे समय में हरियाली को बढ़ावा जरूर दीजिएगा, और हरियाली को जिंदगी में बढ़ावा देंगे तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि ईश्वर भी आपकी जिंदगी में हरियाली ही हरियाली रखेगा। वक्त इशारा में होता हूं 9:11, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, न टेंशन लेने की जरूरत न किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है जनाब, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनुशाता 90.8 FM। कल होगी फिर आपसे मुलाकात, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। हाय हाय, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा सामुदायिक रेडियो स्टेशन और स्मार्ट मिलकर के स्वास्थ्य जन जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा के नवादा गांव में। यहां पर हमारे साथ में हैं डॉक्टर बेबी शर्मा। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं नवादा में और अपना क्लिनिक चलाती हैं, और बहुत सारी जानकारी आज हम डॉक्टर साहिबा से लेंगे। और ख़ास करके हम जो गर्भवती महिला हैं, बच्चे हैं, उनके बारे में बात करेंगे और पोषण के बारे में बात करेंगे। और ये देखा भी जाता है कि जो महिलाएँ होती हैं परिवार में, परिवार की धुरी होती हैं, और वो सबका ख्याल तो रखती हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपना ख्याल वो नहीं रख पाती हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, ये सभी बातें आज हम डॉक्टर बेबी शर्मा जी से करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर बेबी शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत।
1: थैंक यू।
0: खून की कमी की बीमारी अक्सर हम सुनते हैं, देखते हैं कि महिलाओं में ये ज़्यादा, खासकर गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें तो ये ज़्यादा ही होती है, और बच्चों में भी बीमारी देखने को मिलती है। तो इसकी क्या वजह है बीमारी की, और किस तरह से जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं?
1: सबसे पहले तो सर, जो आपने ये जागरूकता अभियान चला रखा है, इसके लिए मैं आपकी बहुत ही प्रशंसा करना चाहूंगी, क्योंकि आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमारे आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को जागरूक करने के लिए, उनको अपने हेल्थ के बारे में जागरूक करने के लिए आप ये अभियान चला रहे हो। तो ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए मेरी तरफ से जितनी भी अच्छी जानकारी हो पाएगी मैं वो आपको जरूर देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले तो यही है कि खून की कमी, ये यहाँ के एरिया में तो सर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन, खासकर बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में। सबसे मेन जो बेसिक रीज़न है वो तो यही है सर कि पोषण की कमी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, डाइट का और लाइफस्टाइल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से डे बाय डे आपका HB जो है कम होता जाता है, RBCs हैं उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी कम होती जाती है। किसी भी तरह का एनीमिया हो, या तो HB कम होता है, या जो आपकी RBC है वो अच्छी तरह से मैच्योर नहीं होती, वो फंक्शन नहीं करती है ढंग से, वो भी एक एनीमिया का ही रूप होता है। तो सबसे जो मेन कारण होता है वो तो आपका यही है कि आपकी जो खान पान है उसमें पूरी तरह से लापरवाही होती है। अच्छा, दूसरा रीज़न क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि हम डाइट तो अच्छी लेते हैं लेकिन फिर भी क्यों थकावट रहती है, क्यों एनीमिया रहता है। उसमें फिर हमारा दूसरा जो कंसर्न आ जाता है वो आता है सर मानसिक स्वास्थ्य पे। अगर आप अच्छी डाइट लेते हो, देखिए मैं आयुर्वेद की डॉक्टर हूँ, हमारे आयुर्वेद में खाने के टाइम के भी 10-15 रूल्स हैं कि आपको इस तरह से खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किस मनस्थिति में खाना चाहिए। अगर आप क्रोध में खाओगे, अगर आप अवसाद में खाओगे, दुख में खाओगे, तो आप कितनी भी अच्छी डाइट ले रहे हो वो आपको कोई भी फायदा नहीं करेगी, और डे बाय डे फिर वही किसी ना किसी रूप कमजोरी के रूप में आपका शरीर उसको दिखाएगा, चाहे वो कैल्शियम की कमी हो जाए, हड्डियों में से पोषण चला जाए, या फिर वो एनीमिया के रूप में आपका आएगा। तो सबसे पहला तो आपका रीज़न हो गया कि पोषण की कमी तो है ही है, आपकी डाइट सही नहीं है, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है। दूसरा है कि आपकी जो मनस्थिति है वो आपकी उसके एक्यूरेट नहीं है, जो आपकी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन होने चाहिए कि कैसे सेल्स बनती है, कैसे RBC WBC प्लेटलेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इस चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम एनीमिया से को कंट्रोल कर सकते हैं।
0: तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं डॉक्टर बेबी शर्मा जी। तो अब बात करते हैं कि जो हम एनीमिया की बात कर रहे हैं, तो इसकी कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। मान लीजिए कोई एनीमिया का शिकार हो चुका है, महिलाएं हैं या बच्चे हैं, तो एक तो ये कंडीशन आ गई, दूसरे के निकट भविष्य में ये हमको ना हो, तो दोनों कंडीशनों के बारे में आपसे जानना चाहें, क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं।
1: देखिए सबसे पहले तो अगर आपके आसपास कोई सुविधा है तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा लें। सबसे कॉमन जो बेसिक टेस्ट होता है वो होता है CBC, उससे एक्यूरेट ये पता चल जाता है कि आपका एनीमिया का लेवल किस लेवल तक का है। आपका जो नॉर्मल BP है फीमेल्स में, अगर हम बात करें तो 12 से 16 ग्राम होना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं 10 साल तक के उनमें 13 से 17 18 ग्राम तक भी हम नॉर्मल मान के चलते हैं। तो अगर आप आसपास ऐसी कोई सुविधा है तो ज़रूर से एक बार अपना CBC टेस्ट करा लें, ताकि एक रीज़न का पता चल जाए, जब हमें रूट कॉज पता चल जाएगा तो हम उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। दूसरी बात, चलो आपके आसपास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसे तो फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको जैसा आहार विहार बताएंगे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। दूसरी बात, जो आपको घर पे खुद ध्यान रखनी है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो या उनकी भी सारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको खुद क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपने एक दिनचर्या बनाइए, जब तक आप एक अच्छी दिनचर्या नहीं बनाएंगे तब तक आपकी सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसा हम कई बार सुनते भी हैं कि अगर आप एक मटके को भरना चाहते हो तो उसमें जितने छेद है पहले उन छेद को बंद कर दीजिए, फिर डे बाई डे आपका मटका भर जाएगा। तो आपकी लाइफ में जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो एनीमिया कोच कर रही हैं, पहले तो उनको दूर कर दीजिए। इसके लिए एक संतुलित आहार, संतुलित विहार, दोनों चीज़ें हम मेंशन करते हैं। हमारे आयुर्वेद में देखिए एक स्वस्थ की परिभाषा होती है, सम दोषः सम अग्निश्चय सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब जिसके दोष सम है, जिसकी धातु सम है, जिसकी मल क्रिया यानी जो आपके मल है, यूरिन पास आउट है, स्टूल पास आउट है, वो समय पर हो रही है, जिसकी आत्मा और इंद्रिय प्रसन्न है, सिर्फ उसी को हम स्वस्थ कह सकते हैं। इसमें आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी आ गया, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी आ गया। तो अभी हम बात करें सिर्फ एनीमिया के बारे में, तो इसके लिए क्या करना है, एक संतुलित दिनचर्या बनानी है। आपका उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। उठने के बाद 5-10 मिनट आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को दीजिए, शांति से बैठिए, अपना शेड्यूल बनाइए कि आज हमें डाइट में ये लेना है। अब घर में अगर आपके बहुत अच्छी डाइट नहीं है, देखो सब तरह की फैमिलीज होती है, बहुत अच्छा अगर आपको पोषण नहीं मिल रहा है तो घर में जो चीज़ अवेलेबल है उनको भी अगर संतुलित तरीके से खाते हैं, अगर आपके घर में दाल है, स्प्राउट्स बना सकते हो आप उनके, मल्टीग्रेन आटा यूज कर सकते हो, अगर आपके घर में बादाम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मूंगफली का भी यूज कर सकते हो। तो घर में जो चीज़ होती है उसी को संतुलित तरीके से खाकर एक समय पर, ऐसा नहीं है कि लेडीज क्या करती है 12-1 बजे सारा काम हो गया फिर अपना खाना खाएंगी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सुबह 7-8 के बीच में कुछ हल्का फुल्का आपने ले लेना है। आप पैकेट फूड लाते हो, उस पर इतना खर्चा करते हो, तो उन पैसों से आप कुछ हेल्दी चीज़ें भी खा सकते हो, एक सेब ला के खा लिया, एक केला ला के खा लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आप घर पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आप संतुलित करके अपने डाइट का ध्यान रखिएगा। दूसरा एक चीज़ जो हम हर कोई बंदा यूज कर सकता है, एक आंवला की रसायन यूज करते हैं हम। अगर आंवला की रसायन नहीं मिल रहा है तो आंवला भी हम डेली बेस पे यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हर जगह मिल जाती है। तो एक आंवले का यूज अपनी डाइट में जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई और है ऐसी शॉप तो एक पुनर्नवा मंडूर आता है, ये दो चीज़ आप विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के भी अपने आप भी ले सकते हैं। तो आंवले का यूज, पुनर्नवा मंडूर का यूज, और घर पे जितने भी आपके खाने पीने की सुविधा है, देखो फ्रूट्स में तो हम बात करते हैं अनार, गाजर, सेब, चुकंदर, मौसम के अकॉर्डिंग जो भी मौसमी फ्रूट होता है हमें उस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। डाइट में जो भी आपके घर में सब्जी बनती है, रोटी बनती है, हरी सब्जियों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। तो ये हर एक घर के शेड्यूल अलग अलग होता है खान पान का, तो आप उन्हीं संसाधनों में से अपने एनीमिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी बात, जब आप उनका बाहर का पैकेज्ड फूड बंद कर दोगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप घर का खाना शुरू कर देते हैं। कोई एक दो डेयरी प्रोडक्ट्स और घर में जो भी आपके सब्जी रोटी बनती है, कोई हम स्पेशल मेंशन नहीं करेंगे कि आप मल्टीग्रेन खिलाओ, ज्वार खिलाओ, बाजरा खिलाओ, जो भी आपके घर की डाइट है, जो भी आपके पुराने टाइम से चलती आ रही है, वो भी अगर आप बच्चों को सही टाइम से सही भूख में दोगे तो उनसे भी एनीमिया की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी।
0: बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं किस तरह से एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अब बात कर लेते हैं जो खासकर गर्भवती महिलाएं हैं तो वो अपने पोषण का ध्यान कैसे रखें ताकि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके।
1: गर्भवती महिलाओं को तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है सर, क्योंकि वो एक अगर हेल्दी बच्चे को पैदा करेंगी तो हमारा समाज, ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्यूचर बनेगा देश का वो बिल्कुल हेल्दी बनेगा। और अगर उन्होंने अपने खान पान का ध्यान नहीं रखा तो खुद तो बीमारी से ग्रसित होंगी ही होंगी, परिवार वाले भी दुखी होंगे, साथ ही साथ बच्चा भी कुछ ना कुछ बीमारी लेके आएगा जो कि फिर माँ बाप के लिए भी बहुत ही मतलब टेंशन वाली बात हो जाती है। सबसे पहले तो गर्भ का पता चलते ही आपको पहली विजिट तो डॉक्टर के पास जरूर करनी है। जैसे आप सामुदायिक केंद्र चला रहे हैं तो वहाँ पे जाके, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पे चेकअप होता है वहाँ भी करवा सकते हैं। सबसे पहली विजिट तो पहले 3 महीने में हो जानी चाहिए डॉक्टर के पास। अगर बाई चांस फिर आप नहीं भी जा पा रहे हो तो कम से कम जो सरकारी जो सुविधा देती हैं, जो टैबलेट देते हैं आयरन की, कैल्शियम की, वो तो आपको टाइम टू टाइम ले ही लेनी चाहिए, लेकिन एक रूटीन चेकअप होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गर्भवती महिलाएं सबसे पहला तो क्या है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, 1 या 2 चेकअप तो आपके पहले 3 महीने में ज़रूर से ज़रूर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, आपको सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे हम सर्दी के सीज़न में हमारी हरी सब्जियों पे ज़्यादा फोकस रहता है, गर्मियों के सीज़न में हमारा वॉटरी फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है ताकि किसी तरह की डिहाइड्रेशन ना हो, बच्चे में कोई कुपोषण वाली बात ना आए, बच्चे में जो पानी है गर्भ में, जो लाइकर है, वो अच्छी तरह से बनता रहे। जैसे जैसे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होगा वैसे वैसे ही वो बीमारियों से बचा रहेगा। दूसरी बात जो हम घर पे जो मेन यूज कर सकते हैं छोटी मोटी चीजें, एक

0: रखिएगा और घर पे भी अपने स्वास्थ्य का, अपने हार विहार का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और फिर वही मैं मेन बात फोकस करना चाहूँगी, मानसिक स्वास्थ्य पे। अगर आपका मन खुश है तो आप कम आहार में भी आप हेल्दी बच्चा कर सकते हो, लेकिन अगर मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो सर आप कितना भी अच्छा खा पी लीजिएगा वो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं करेगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का उससे भी ज़्यादा ध्यान रखना है आपको।
1: जो न्यू बॉर्न बेबी हैं तो उनका कैसे ध्यान रखें, जो माता हैं या उनके जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं?
0: लेकिन न्यू बॉर्न बेबी को सबसे पहले तो हमें उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी में सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो होती है जॉन्डिस की। क्योंकि एकदम से बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो बाहर के एनवायरमेंट में उसको सेटल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए उसके जो RBCs हैं, जो ब्लड है, वो थोड़ा सा हफ्ते या 10 दिन पहले कम होता है। तो सबसे पहले तो न्यू बॉर्न बेबी को जो सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है, जैसे सनराइज होता है, सूरज उगता है, तो मौसम के अकॉर्डिंग करना है। अब सर्दियों में आप सुबह लेके मत बैठ जाइएगा, नहीं तो वो फिर सर्दी से भी ग्रसित हो सकता है। तो जब अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है, थोड़ी सी गर्माहट वाली, 20 से 25 मिनट आपको बच्चे को वो दिखानी है, जरूर से जरूर। अब ये डिपेंड कीजिएगा, आप अगर बहुत सर्दी है तो थोड़े से कपड़े भी पहना सकते हैं, और मौसम अगर अनुकूल है तो फिर उसको बिल्कुल अनकवर करके उसकी सिर्फ जो टेस्टीज और जो पेनिस होता है वो एरिया आपको कवर करके रखना है, उसकी आंखों को आपके कवर करके रखना है, और सुबह की 15-20 मिनट की आपको धूप जरूर लगवानी है। दूसरा है माँ का दूध। कई बार ये हो सकता है माँ की लापरवाही, या कई बार डॉक्टर्स की भी कुछ लापरवाही होती है कि वो बच्चे को जो फर्स्ट 24 घंटे का दूध है वो थोड़ा अवॉइड कर देते हैं, या उनको ध्यान नहीं रहता, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो पहले 24 घंटे का दूध और उसके बाद भी हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में बच्चे को माँ का दूध जरूर से जरूर पिलाना है। 6 महीने तक हमें उसको ऊपर का कोई भी आहार नहीं देना है, और जैसे ही माँ डाइट खाएगी वैसे ही उसका दूध बनेगा और वैसे ही बच्चे का पोषण होगा। तो पहले 6 महीने में हमें ये नहीं सोचना कि डिलीवरी हो गई है, अब माँ को ज़्यादा न्यूट्रिशन की, ज़्यादा पोषण की जरूरत नहीं है। आयरन, कैल्शियम पहले 6 महीने में, डिलीवरी के बाद भी माँ को लेने जरूरी होते हैं, ताकि दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे कोई भी फर्क ना आए।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है, किस तरह से जो न्यू बॉर्न बेबी है उनका ध्यान परिवार वाले, माता हैं, वो कैसे रखेंगी। जैसे भी बात आप बता रही थी, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है।
0: मानसिक स्वास्थ्य की सर महिलाओं को ही थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है, मेल्स को भी होती है, पर वो एक हद तक अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो बाहर भी जाते हैं, उनका सर्कल भी अलग होता है, उनका जॉब एरिया होता है। लेकिन फीमेल्स के साथ, जबकि आजकल हमारे यहाँ पे मोस्टली फीमेल्स वर्किंग नहीं होती हैं, घर पे उनका ज़्यादा टाइम बीतता है, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य एज कम्पेयर टू मेल्स थोड़ा सा डाउन ही रहता है। और सर मानसिक स्वास्थ्य की तो हम क्या परिभाषा बताएं, हमारे तो यहाँ पे मानसिक बीमारी को बीमारी माना ही नहीं जाता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जैसे कोई सास या बहू आई, तो सास कहती है कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है, खाने पीने को अच्छा है, पहनने ओढ़ने को अच्छा है, पता नहीं किस बात से दुखी रहती है। लेकिन जब हम फीमेल से अकेले में बात करते हैं सर, तब हमें पता होता है कि वो कितनी सारी दुविधा से जूझ रही होती है। और जैसे आपने बताया कि गर्भवती महिलाएं हैं या न्यूबॉर्न बेबी जिनके होता है, उनका तो मानसिक स्वास्थ्य और भी बुरी हालत में है, क्योंकि ना तो वो अपने लिए कुछ कर पा रही है, ना वो बच्चे का ढंग से ध्यान रख पा रही है। और मानसिक स्वास्थ्य तो एक ऐसी प्रॉब्लम है सर, अगर आपका मन बीमार है और आपका शरीर तंदुरुस्त है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका शरीर में कोई प्रॉब्लम है, आप सपोज करो हैंडीकैप, आपके एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, लेकिन अगर आपका मन स्ट्रोंग है तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो सर, और ये हम लाइव एग्जांपल अपने आसपास देखते भी हैं। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है सर कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारे समाज में इसको कोई वैल्यू भी नहीं दी जाती है। मानसिक बीमारी को हम बीमारी समझते ही नहीं है जब तक इंसान पागल के लेवल पर ना आ जाए, जब तक वो बिल्कुल ही अपना संतुलन ना खो दे। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं सर, और मानसिक स्वास्थ्य में हम किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, ना कोई दूसरा इसको ठीक कर सकता है, ये हम खुद ही ठीक कर सकते हैं। और इसको ठीक करने के लाखों तरीके हैं सर, आपका जिस साइड इंटरेस्ट है आप उस साइड जाइएगा। मानसिक तनाव होने के भी लाखों रीज़न है, अगर हम काउंट करने बैठेंगे तो घर परिवार, ऑफिस, बच्चे, बहुत सारे रीज़न होते हैं सर। लेकिन अगर हम इसको ठीक भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास लाखों रीज़न है। डिपेंड करता है कि आपका माइंड किस तरफ जाता है। अगर आप बुक पढ़ने में शांति का अनुभव करते हैं तो आप दिन में 15-20 मिनट अपने लिए कोई अच्छी सी बुक पढ़ने के लिए निकालिए। अगर आप घूमने फिरने में अच्छा अनुभव करते हैं तो कोई डेली का आधा घंटा अपने घूमने फिरने के लिए निकालिए। पार्क में जाइए, अकेले बैठिए, कुछ भी करिए। अगर आपको पूजा पाठ या भक्ति करने से अच्छा महसूस होता है तो कोई दिन के 40-45 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए।

0: जिसमें आप जिस भी भगवान को जिस किसी को भी मानते हो तो आप उसके साथ अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका सही है तो आप फिर शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं घबराएंगे सर। अगर आपको एनीमिया भी हो गया या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता है मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे ये दवाई लेनी है, अगर आपका मन स्ट्रोंग है तो। लेकिन अगर मन कमजोर है तो आप ना अपने लिए कुछ कर पाएंगे सर और ना किसी दूसरे के लिए।
1: बिल्कुल, तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, मन का स्वास्थ्य है, उसका प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। आखिर में डॉक्टर बेबी शर्मा जी आपसे बात कर लेते हैं, जैसा कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और हीट वेव के बारे में भी सुनते हैं, लू के बारे में भी सुनते हैं, तो किस तरह से लोग, महिलाएं, बच्चे अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करें, क्या खाएं क्या पिएं, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे।
0: सबसे पहला तो बचाव यही है सर, अगर हमें किसी भी चीज से बचना है तो उस चीज से दूर रहो। तो अगर आपको पॉसिबल है जितना आप घर पर रह सकते हैं तो उतना आप घर पर रहिएगा, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबको काम करने के लिए भी निकलना पड़ता है। तो उसके लिए फिर आप अपना बचाव कीजिएगा, अपनी बॉडी को कवर करके निकलिएगा। खासकर आपका जो सिर वाला रीजन है जहाँ पे हीट डायरेक्ट एब्जॉर्ब होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, उसको आप कवर करके निकलिएगा और अपने साथ हाइड्रेशन के लिए कुछ ना कुछ जरूर रखिएगा। अगर आपका बीपी ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स का घोल है वो एक बोतल पानी में घोल के आप अपने साथ लेके चल सकते हैं, सिंपल पानी ले सकते हैं। और बजाय कि आप चाय कॉफ़ी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने के, आप रास्ते में भी कभी नींबू पानी पी लिया, कभी आपने या कुछ जो ये जलजीरा टाइप के आते हैं ये पी लिया, मतलब अपनी बॉडी को आपने हाइड्रेट रखना है, किसी भी तरीके से आप उसको रख सकते हैं। दूसरा, अपने आप को कवर करके निकलना है। तीसरा, अपने खान पीन पे ध्यान रखना है, घर से खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं निकलना है, कुछ भी हल्का फुल्का अपना नाश्ता करके निकलना है। और अगर पॉसिबल हो, आपके पास ऐसा कोई साधन है, तो अपने बैग में एक दो फ्रूट जरूर रखिएगा।
1: बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर बेबी शर्मा जी आपने आज सुनो शारदा 90.8 FM सामुदायिक रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है, और जरूर वो आपकी बातों का अनुकरण करेंगे, जीवन में आपकी बातों को धारण करेंगे, अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुनो।

0: जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हम कहते हैं कि सेहत सही तो लाभ कई। राम राम दोस्त, सलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शाता 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। इसी संदर्भ में सुजाता जो कि हमारी सहयोगी हैं, उन्होंने बात की है डॉक्टर अजय गुप्ता से, जो सब्जेक्ट है इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण, ये क्यों जरूरी है इस पर विस्तार से बातें हुई। आइए सुनते हैं ये विशेष चर्चा।
1: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूँ सुजाता स्मार्ट एनजीओ से और मैं हूँ इस समय परिवार कल्याण विभाग में। मेरे साथ है डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर RCHUP। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको एक हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
1: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
2: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
1: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं।
2: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहाँ जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी ANM बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय BCG का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ OPV की वैक्सीन पिलाई जाती है। और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने JE का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल IPV लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग DPT की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजल्स रूबेला का बूस्टर डोज और JE की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो DPT वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का वैक्सीन लगाते हैं।
1: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को।
2: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो TD का टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है, डिप्थीरिया से बचाव होता है और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जो बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
1: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
2: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा सारा खून आता है, उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो भी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
1: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
2: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है, जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
1: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
2: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं, और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहां पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती हैं, और हर एक हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर, आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1000 की आबादी पर जो होती हैं, जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं, और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉइज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है, जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, और अब मैं देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं, और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 में पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहां भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांति है तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए, और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
1: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
2: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो एचपीवी का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है। ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें एचपीवी वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है। और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारतवर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
1: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
2: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया, हमारे पास मैपिंग है। हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है। और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है और इनमें नियत दिवसों में हमारी एनएम बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं। अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
1: क्या सिर्फ बच्चों का टीकाकरण काफी है या परिवार के बाकी सदस्यों जैसे किशोरियों, गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है?
2: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए, जन्म के समय टीका लगाते हैं, फिर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह पे टीका लगता है, फिर 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों को टीका लगता है। ये एक ड्यूरेशन होता है, इस बीच में कभी भी आप टीका लगा सकते हैं। 16 से 24 माह के बीच में हम टीका लगाते हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाते हैं, 10 वर्ष के और 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीका लगाते हैं और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
1: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे जरूरी संदेश क्या होगा जो किसी की कारण से अभी भी टीकाकरण को लेकर असमंजस में है?
2: देखिए, अब अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मार्ट एनजीओ का धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरा आखिरी संदेश यह है कि बिना किसी संशय के आप टीकों पे विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी संशय है तो आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, एनएम बहन जी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं या उपलब्ध आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे मेडिकल अफसर से आप बात करिए और अपने संशय को दूर करिए। बच्चों के लिए टीका बहुत जरूरी है क्योंकि ये टीका बच्चों में होने वाली मृत्यु को आधी से ज्यादा कम कर देता है। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अजय गुप्ता को, सब्जेक्ट था इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण क्यों जरूरी है और टीका सही समय पर अगर आप अपने बच्चों को लगवाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख सकते हैं और मृत्यु दर को भी आप ना कह सकते हैं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन सुनो।

0: सुना शारदा 90.8 FM। चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम?

0: करें।
1: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है।
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज भी हमारे गांव में शहर में ऐसे नागरिक मौजूद हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो खुद का घर बनवाने में और पुराने घर की मरम्मत करवाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप ग्रामीण आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपका जो गांव है वो शहरी क्षेत्र में आता है तो आप शहरी आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने और घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के अंतर्गत देश के अनेक राज्यों में लाखों नागरिकों को पक्के मकान बनवाने के लिए आवास योजना की राशि उनके बैंक खातों में दी भी जा चुकी है। और अब किसान मित्रों बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता की। तो किसान मित्रों, ऐसे परिवार जो मिट्टी के कच्चे घरों में निवास कर रहे हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। और ऐसे नागरिक जिनको अभी तक भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कोई भी आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है, देश के ऐसे नागरिक जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो उनका पक्का घर बनवाने के लिए इस योजना के अंतर्गत पैसा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को आवास के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इससे महिलाएं खुद के घर की मालिक बनकर समाज में सशक्त हो सकती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जिन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है उसमें आधार कार्ड, आय का प्रमाण पत्र, BPL सूची का फोटोकॉपी, आवेदनकर्ता का बैंक खाता, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो। तो हमारे वो गरीब बहन भाई जिनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है वो अपने नजदीक जन सुविधा केंद्र पर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। और आइए अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन की तरफ और आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं योगेंद्र निमचाना।

किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे खेती में अत्यधिक लागत आ रही है और जल, भूमि, वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार की सभी समस्याओं से निपटने के लिए जैविक खेती करने की सिफारिश हमारे कृषि वैज्ञानिक करते हैं। भारत सरकार भी इस खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, साथ ही राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन भी चला रही है, जिसके अंतर्गत जैविक खेती करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है और जैविक खेती करने के तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। किसान मित्रों, रासायनिक खादों के बेहिसाब प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाने में जैविक उर्वरक काफी कारगर हैं। तो किसान मित्रों, आप भी जैविक खेती करके कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए बस जरूरत है आपको जागरूक होकर जैविक खेती करने के तौर तरीके से भली भांति परिचित होने की। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती है, इसके साथ ही आपको आय अधिक प्राप्त होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, जिसकी वजह से आप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान मित्रों, आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह अत्यंत लाभदायक है। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही जैविक खेती की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और किस्सा रहेगा रामायण का।

किसान मित्रों, अभी आप ज्ञानेंद्र सरधाना से ये रागनी सुन रहे थे, किस्सा था रामायण का। किसान मित्रों, ऐसा देखा गया है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो दुधारू पशुओं पर तो बहुत अधिक ध्यान देते हैं, मगर जो नवजात और छोटे पशु हैं उन पर इतना ध्यान नहीं देते और उनके प्रबंधन को महत्वपूर्ण नहीं समझते, क्योंकि उनसे उन्हें कोई तत्कालिक लाभ नहीं मिलता है। और किसान मित्रों, आपको बता दें कि एक शोध से ये बात सामने आई है कि उचित प्रबंधन के अभाव में 15-20% जो नवजात पशु होते हैं वो जन्म के एक महीने की अवधि में मर जाते हैं। तो सभी पशुपालक भाइयों को ये बात समझनी चाहिए कि पशुधन का भविष्य नवजात पशु की देखभाल और प्रबंधन पर निर्भर करता है, और प्रत्येक पशुपालक को नवजात और छोटे पशुओं के प्रबंधन संबंधी सभी बारीकियों को ध्यान में रखना चाहिए। किसान मित्रों, नवजात पशुओं को दिया जाने वाला सबसे पहला और सबसे जरूरी आहार है माँ का पहला दूध, मतलब खीस। खीस का निर्माण माँ के द्वारा नवजात पशु के जन्म से 3-7 दिन बाद तक किया जाता है, और ये नवजात पशु के लिए पोषण और तरल पदार्थ का प्राथमिक स्रोत होता है। ये नवजात पशु को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है जो उसे संक्रामक रोगों और पोषण संबंधी कमियों का सामना करने की क्षमता देता है। यदि खीस उपलब्ध हो तो जन्म के बाद पहले 3 दिनों तक नवजात पशु को खीस पिलाते रहना चाहिए। जन्म के बाद खीस के अतिरिक्त नवजात पशु को 3-4 सप्ताह तक माँ के दूध की आवश्यकता होती है। उसके बाद नवजात पशु वनस्पति से प्राप्त माट और शर्करा को पचाने में सक्षम हो जाता है। नवजात पशुओं को खिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को अच्छी तरह साफ रखना चाहिए। इन्हें और खिलाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य वस्तुओं को साफ और सूखे स्थान पर रखना चाहिए। नवजात पशुओं के रहने के स्थान पर अच्छा बिछौना होना चाहिए ताकि आराम से और सूखी अवस्था में वो रह सकें। लकड़ी के बुरादे या पुआल का इस्तेमाल बिछौने के लिए सबसे अधिक किया जाता है। नवजात पशु के ऐसे बाड़े जो घर के बाहर हों, आंशिक रूप से ढके हुए और दीवार से घिरे होने चाहिए ताकि धूप की तेज गर्मी या ठंडी हवा या फिर यूं कहें वर्षा और तेज हवा से नवजात पशु की सुरक्षा हो सके। नवजात पशुओं को बीमारियों से बचाकर रखना उनकी आरंभिक वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इससे उनकी मृत्यु दर कम होती है। साथ ही बीमारी से बचाव बीमारी के इलाज की तुलना में कम खर्च में किया जा सकता है। नवजात पशुओं का नियमित रूप से निरीक्षण करें, उन्हें ठीक तरह से खिलाएं और उनके रहने की जगह और परिवेश को स्वच्छ रखें। तो हमारे पशुपालक भाई इन सब बातों का जरूर ध्यान रखेंगे और वो अपने नवजात पशुओं का उचित प्रबंधन करेंगे। तो पशुपालक भाइयों, ये तो आपने जाना कि हमें नवजात पशुओं की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं कोशिंदर खदाना और किस्सा रहेगा सत्यवान सावित्री का।

कोशिंदर खदाना द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
4: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
3: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
8: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
7: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac।

बेटी वाले को बहका दिया कि अच्छी दावत करनी चाहिए शादी में। तो दोस्तों शादी में जो दावत हुई उसमें खूब जोर लगा दिया बेटी वाले ने मेहरबानों, और बारात विदा होने वाली थी, दुल्हन को सजाया गया। आज उर्मिला सखी सहेलियों के बीच में किस तरह से बैठी हुई है, सुनिए यहाँ के बोल।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: महावारी के दौरान सामान्य लक्षण, आइए इनके बारे में जानते हैं। सिर दर्द, स्तनों में दर्द, पेट फूलना, ज्यादा पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द या पेड़ू यानी कि पेट के नीचे में दर्द, ये सब महावारी के दौरान दिखाई देते सामान्य लक्षण हैं।
2: यदि महावारी के दौरान आपको पेट में दर्द हो रहा हो तो आप पेट दर्द में राहत के लिए एक बोतल में गर्म पानी भरें और एक तौलिए में लपेटकर उसे पेट पर रखें।
1: पेट की मालिश करें, अदरक की या कोई हर्बल चाय ले सकते हैं, कम नमक वाला आहार लें, पत्तेदार सब्जियां और फल खाएं जिसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है, तेज चलने वाली सैर करें। अगर इन सब से कोई मदद नहीं मिलती है और कोई अनियमितता दिखती है तो नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के जनक।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण पांचाल आपके साथ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही उमदा डिस्कशन, जिस पर कि हमारे साथ होंगे कुछ गेस्ट और वो डिस्कशन है महिलाओं पर और मीडिया पर। लेकिन विषय क्या है? विषय है मीडिया में महिलाओं का आज के युग में चित्रण। और इस डिस्कशन में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुक्ता मर्तोलिया, डॉक्टर उत्सव कृष्ण मुरारी जी, डॉक्टर CP रश्मि और मिस्टर प्रवीण जैन। ये सभी अतिथि आज हमारे साथ जो है वो SMFE डिपार्टमेंट शारदा यूनिवर्सिटी से। आप सभी का इस डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद किरण जी।
4: थैंक यू।
5: धन्यवाद मैम।
2: तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डॉक्टर मुक्ता मर्तोलिया से। डॉक्टर मुक्ता, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मीडिया में औरतों का जो चरित्र चित्रण किया जा रहा है या फिर जिस भी तरह से उन्हें प्रेजेंट किया जा रहा है, उसमें सबसे पहले हम पॉजिटिविटी से बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कितना पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन आज की तारीख में हो रहा है?
3: किरण जी, देखिए ये बहुत ही एक संगीन मुद्दा है जिस विषय में हम आज बात कर रहे हैं। और महिलाओं का मीडिया में जो चरित्र चित्रण है, इसके ऊपर बहुत डिस्कशंस होते भी रहे हैं, काफी फ्रूटफुल भी हैं। तो अगर पॉजिटिव की तरफ जाएं तो दरअसल मीडिया काफी अच्छे तरीके से आजकल जो विमेन है या जो महिलाएं हैं उनका पोर्ट्रे कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखें कुछ एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें, अगर वहां पे आप देखेंगे तो जो एक स्टीरियोटाइप इमेज विमेन्स का रहा है हमेशा से मीडिया में, हम रिप्रेजेंट करते हैं और मीडिया हमेशा एक्यूज्ड भी होता रहा है इस चीज को लेके कि उन्होंने

0: शायद महिलाओं को कहीं एक टाइप्ड तरीके में बांध दिया है, तो उसको वो कहीं वो रूढ़िवादी जो विचारधारा है उसे तोड़ रहा है। जैसे कुछ एडवर्टीजमेंट्स हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि पहले ये होता था कि महिलाओं का काम है वो घर की देखभाल करेंगे, घर में मतलब अपने हस्बैंड्स बच्चे को देखेंगे, कहीं ना कहीं वो टूट रहा है। वो चाहे आप धारा के एड्स हों या कैसे भी, जहाँ पे ये है कि अब वो वॉइसलेस नहीं होकर उनका घर की जिम्मेदारियों में और घर की कहे ना जैसे बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं उनमें उनका पक्ष रहता है या वो जो कहेंगी वो माना जाता है। तो ये जो एड्स हैं ये बहुत तरीके से अगर बोले तो सोसाइटी में हम, क्योंकि मीडिया हमेशा सोसाइटी का एक मिरर रहा, जो सोसाइटी में होता है वो मीडिया में दिखता है और जो मीडिया में दिख रहा है वो सोसाइटी में होना शुरू होता है। तो मैं ये कहूंगी कि अभी जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है वहाँ पे मीडिया का जो पोर्ट्रेयल है, मतलब मीडिया में जो वुमेन्स का पोर्ट्रेयल है, वो बहुत हद तक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जा रहा है, जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि महिलाएं अब सिर्फ आओ बहन चुगली करें इसमें नहीं दबके रह गई हैं, वो अब घर में उतना ही हिस्सेदारी निभा रही हैं जितना कि हमेशा से पुरुष निभाते आए हैं। तो मेरे हिसाब से मीडिया काफी अच्छा कर रहा है व्हेन इट कम्स टू यू द पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन मीडिया रादर।
1: तो डॉक्टर मुक्ता से जब हमने जाना कि महिलाओं को मीडिया में जो उनका चित्रण किया जा रहा है उसकी पॉजिटिविटी के बारे में जाना, तो इसमें अब मैं डॉक्टर उत्सव कृष्ण मुरारी जी से बात करना चाहूंगी कि जिस तरह डॉक्टर मुक्ता जी ने बताया कि अब उनका पॉजिटिव पोर्ट्रेयल जो है वो हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि पुराने अगर हम सिर्फ 10 या 15 साल पहले ही जाएं, तो वहां से लेकर अब तक कितना बदलाव आप देखते हैं? आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं हैं वो पहले सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई की जा रही थी या फिर सिर्फ सेक्सुअलिज्म के लिए यूज किया जा रहा था, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, सिनेमा हो, उन्हें एक बेहतरीन रोल देने के लिए, या फिर सिनेमा में अगर हम बात करें तो वो उनकी जो वुमेन ओरिएंटेड मूवीज थी वो कितनी चल रही थी या फिर उनमें उनको किस तरह के रोल्स दिए जा रहे थे, सोसाइटी में कितना एक्सेप्टेंस था। तो तब की एरा में, ज्यादा नहीं 10-15 साल पुरानी बात कर रही हूँ, और आज में आप कितना फर्क महसूस करते हैं?
2: देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप किसी महिला के बारे में सोचते हैं या सोचने के लिए शुरू करते हैं तो सोच नहीं समझ रखिए। आए दिन ऑटो के पीछे जो मेरा अभिमान, महिलाओं का सम्मान, ये महज शब्द नहीं है। यहाँ सिर्फ महिला की बात नहीं हो रही है, यहाँ उस जीवन की बात हो रही है जो प्रकृति आपको देती है। जो प्रकृति की बात आती है तो प्राकृतिक रूप से आप समझिए कि जितना एक पुरुष के पास कहिए राइट्स है, उतना ही उस महिला के पास भी राइट्स है। पहले तो वो दायरे को समझना जरूरी है जो इंसान ने स्वयं ही बना दिया है, और जब इसको बनाता है तो समझिए आप एक दूसरे पर हावी हो। अब हावी हो जाते हैं तो ना वहाँ पे जीवन है ना मृत्यु है, यहाँ ना मीडिया रहती है ना मीडियम रहता है। माध्यम तो हम और आप हैं और माध्यम बनने के साथ साथ संवाद भी जरूरी है। अब मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म सामने होकर आया जो वॉइस फॉर वॉइसलेस, यहाँ सिर्फ वॉइस फॉर वॉइसलेस वाली बात है, तो ये मीडिया की जरूरत क्यों पड़ी? जब मीडिया कोई चीज दिखाता है तब आपके दिमाग में ये चीज समझ में आती है कि नहीं, ये सही दिखा रहा है, ये चीज तो ये तालीम तो आपको घर से ही शुरू करनी पड़ेगी कि आपकी सोच जो है वो सकारात्मक कब होगी। सोच सकारात्मक जब आप संवाद करेंगे, बिना संवाद के कोई भी चीज। अब चलते हैं 15-20 साल पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, नहीं थी, किताबों के माध्यम से हम लोग जानते हैं, या कई ऐसे शिक्षाविद हैं या कई ऐसे सोशल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं और कई ऐसे कार्य हुए हैं जो सामने आए हैं और उसके बारे में हम जान पाए हैं। लेकिन जानना ही सिर्फ जरूरत नहीं थी, समझ बनाना बहुत जरूरी है। जहाँ तक मीडिया एक महिला को जिस प्रकार से रिप्रेजेंट करता आया है, उसको सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार से परसीव कर रहा है, किस प्रकार से ले रहा है, इसकी समझ वो सामाजिक दायरे में समझना बहुत जरूरी है। मीडिया समाज से है, समाज मीडिया से है, परस्पर मेलभाव बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ सिर्फ मुद्दा यह नहीं है कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के लिए साथ समझ, महिलाओं का कहिए प्राकृतिक रूप से जो संरचना है पुरुष से बिल्कुल अलग है। अब पुरुषों के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनके साथ सामंजस्य बिठाएं, समझ बिठाएं, क्योंकि बिना सामंजस्य और संवाद के कोई भी चीज संभव नहीं। तो मीडिया है तो मीडियम है, आप हैं तो हम हैं, इस तरीके से। तो महिलाओं, मेरा अभिमान, महिलाओं का सम्मान, ये कह लेने से नहीं, इसको सार्थक करना हम सब हम सबके लिए ये सबसे बड़ा दायित्व है।
1: उत्सव जी, जैसे कि आपने बात कही अभी कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ये आपने एक एथिकल बात कही है जो कि हमारे समाज में होनी चाहिए, लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि पिछले 15 साल में आप कितना डिफरेंस अभी देख रहे हैं? क्योंकि जब हम पहले के एडवर्टाइजमेंट्स देखते थे तो उसमें महिलाओं को एक खूबसूरत महिला होनी चाहिए, एक मतलब आज्ञाकारी महिला होनी चाहिए, वो महिला जो सिर्फ घर का काम कर रही है, अपने घर की जिम्मेदारियों को पूर्ण कर रही है, वहाँ पर किसी तरह की भी कोई कमी रह ना जाए, और अगर कमी रह रही है तो उसे सिनेमा हो या एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी ऑडियो विजुअल मीडियम हो, वहाँ पर उसे एक नेगेटिव रोल के तौर पर उसका पोर्ट्रेल किया जाता है। जैसे हम डेली सोप्स भी देख लें, तो जो महिला बगावती है या फिर जो महिला ये सब चीजें नहीं कर रही है, घर की जिम्मेदारियां नहीं कर रही है, तो हम उसे एक नेगेटिव रोल में देखते हैं।
2: मैंने आपको इस बीच में एक शब्द कहा था कि मीडिया जो दिखा रही है वो आदमी सबसे पहले समझ जाता है, और यहाँ पे सामने बैठा व्यक्ति कुछ कह रहा है या समझ रहा है, उसको समझने में हम शायद पूरा जीवन लगा देते हैं। तो शायद संवाद की कमी है। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हम इतने टेक्नोलॉजिकल आइडियाज के साथ घिरे हुए हैं कि खाना तक ऑर्डर करने के लिए अपनी माँ से ना कह के अब जोमेटो हमारी माँ, तो बड़ा जो है द्वंद पैदा हो रहा है। इमोशन जो है, एक तरफ टेक्नोलॉजी आपको सहूलियत देता है, दूसरी तरफ रिलेशनल आइडियाज को समझने में द्वंद्व पैदा करता है। जरा सी दूरी हुई नहीं कि आपकी समझ गड़बड़ा जाती है और आप बेचैन से हो जाते हैं। मीडिया अच्छी बात है, रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा रहा है, बहुत तरीके से बढ़ा रहा है, लेकिन मीडिया का भी एक जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया का भी एक दायित्व बनता है कि मीडिया, कई ऐसे मीडियाज हैं, मैं किसी मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन कई ऐसे मीडियाज हैं जो शायद समय से परे होकर के कई चीजों को प्रेजेंट कर देते हैं। आज सोशल मीडिया के दायरे में देखे तो फेक न्यूज का जो एक दौर चला, तो उसमें फेक न्यूज लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा ही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, महिला सिर्फ महिला है, पुरुष सिर्फ पुरुष है।
1: जी, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो दोनों जो है वो एक डिफरेंट क्रिएचर्स हैं, तो उनको उन्हीं की तरह से सम्मान मिलना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं डॉक्टर सीपी रश्मि जी से। रश्मि जी, आज हम जब देख रहे हैं सिनेमा हो या एडवर्टाइजमेंट्स हो या फिर हम थिएटर भी देखते हैं, कोई भी ऑडियो विजुअल मीडियम हम देखते हैं, तो वहाँ पर हमें हमेशा खूबसूरत महिलाएं ही दिखाई देती हैं। वहाँ पर जगह नहीं है भद्देपन की, लेकिन महिलाएं तो वो भी हैं, राइट्स उनके भी हैं, टैलेंट उनके अंदर भी है। तो आप क्या सोचती हैं कि आज की मीडिया में जो बॉडी इमेज या ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरह के हैं, क्या उनमें कोई बदलाव देख रही हैं आप पिछले 15 सालों में?
3: किरण जी, बहुत ही ज्यादा बदलाव है। ठीक है, अभी आपने दो बातें करी, एक कि सिर्फ सुंदर महिलाओं को देखते हैं, बट जो कि डॉक्टर मुक्ता ने बोला कि कैसे चीजें बदली और कैसे मीडिया का पॉजिटिविटी उन्होंने दिखाई कि कैसे, मतलब आजकल आप देखेंगे प्लस साइजेस के भी एड्स आ रहे हैं। बट समवेयर डाउन द लाइन मैं आपको एक बात समझाना चाह रही हूँ कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड लिपस्टिक फेमिनिज्म जो कि आजकल चल रहा है, जिसमें हर औरत को बोला जाता है, जहाँ पे कि मैं डॉक्टर उत्सव की भी बात को लेकर आना चाहूंगी, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो औरत एम्पावर्ड है या सशक्त है जो कि किसी भी टाइम महीने के उन दिनों में भी सफेद पैंट पहन के दौड़ रही है। ठीक है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मीडिया आज के दौर में इज एवरीथिंग अबाउट कंज्यूमरिज्म। ठीक है, अब उस सेक्टर को, उसको क्या कहते हैं, टारगेट किया जा रहा है जो कि कंज्यूमर्स ने छोड़ दिया था। ठीक है, अब जैसे कि आज की तारीख में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत है जहाँ पे हम बहुत ऑनलाइन कपड़े खरीदने लगे हैं। एक टाइम ऐसा था जब आप स्टोर पे जाते थे, आपको एक्सेल और डबल एक्सेल कपड़े मिलना मुश्किल होते थे, वहाँ आज आपको 7XL से लेके 8XL तक के कपड़े आराम से मिल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ये समझा है कि ये भी एक क्या कहते हैं
0: ग्रुप है
3: जिसे आइडेंटिफाई किया गया, जिसे हम कपड़े बेच सकते हैं। हमारी इंडियन संस्कृति में एक बहुत चीज है कि कपड़ा वो पहनो जो कि आपको कंफर्टेबल हो, बट आज की तारीख में अगर आप देखेंगे कि मॉडल्स होती हैं जो कि टाइट जीन्स पहनती हैं, 15XL तक की मॉडल होती हैं, चाहे वो देखने में अच्छी नहीं लगे, बट बोला जाता है कि ये नारी सशक्तिकरण का एक रूप है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग जो कि मैं ऑडियंस पे ही छोड़ती हूँ कि वो खुद सोचे कि क्या सही है गलत है, सबको पता है
0: जी।
3: बट कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो बॉडी इमेज की बात आ रही है उसको एक नए मार्केट को डेवलप किया जा रहा है
0: जी।
3: ठीक है, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से डिप्रेशन बहुत हो रहा है, एक तरफ हम ये प्रमोट कर रहे हैं चाहे गोरा हो चाहे काला हो चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, सब अच्छा है, सब क्या कहते हैं हर औरत का एक रूप है, वहीं दूसरी तरफ फिल्टर्स को भी प्रमोट किया जा रहा है। अगर मैं मोटी हूँ या कोई पतला है तो अलग एक पर्टिकुलर एंगल से ही फोटो लेगा, उसको प्रमोट किया जा रहा है, कोई भी अपनी नेचुरल फोटो डालना नहीं चाह रहा है इंटरनेट पे। अगर आप किसी लोगों को डीपी के थ्रू जानते हैं और उन्हें रियल में मिलेंगे तो बहुत डिफरेंस होता है उसमें, स्पेशली फीमेल्स ज्यादा क्या कहते हैं फिल्टर्स का प्रयोग करती हैं।
1: तो आपको क्या लगता है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर महिलाओं में किसी तरह का प्रेशर है?
3: बहुत प्रेशर है, ऐसी बहुत रिसर्च की गई है, अगर आप जाएंगे इंटरनेट में पढ़ेंगे, इसकी वजह से बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं। लोग औरतें मतलब ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जहाँ पे लोग अपनी डीपीज में फिल्टर्स यूज कर करके, स्पेशली स्नैपचैट जैसे फिल्टर, उसमें बहुत तरीके के फिल्टर्स हैं कि उन्होंने आपने अपना जो ऑनलाइन स्पेशली जो इंटरनेट पे अपना रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से अपने आपको प्रस्तुत किया है वो इस तौर पे किया है कि वो अपने कुछ इंटरनेट के दोस्तों से मिलने से पहले जाके प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं लोग, तो मतलब इतना असर पड़ रहा है। तो अभी क्या है ना, हम एक ऐसी जनरेशन बना रहे हैं जो कंफ्यूज्ड है, जहाँ पे हर बात को किया जा रहा है क्योंकि हर तरीके के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, एक फोन से लेके फिल्टर से लेके अलग तरीके के कपड़े से लेके मेकअप से लेके सब बिक रहा है, और हर चीज को बेचने के लिए एक इस तरीके के सूडो फेमिनिज्म जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें ऐसी ऐसी बातें फीड की जा रही है जिसका फेमिनिज्म या एक औरत होने से कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमें ये बात जैसे कि डॉक्टर उत्सव ने कहा समझना जरूरी है, मीडिया में जो दिखता है वो नहीं होता है, ठीक है ना। मीडिया आजकल हम शायद वो उस जमाने का मीडिया नहीं रह गया जिसे बहुत मॉनिटर करके प्रस्तुत किया जाता था लोगों के सामने, आजकल इंटरनेट का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक स्नैपचैट इंस्टाग्राम, जिसमें कंटेंट कोई भी दे रहा है और हम उन कंटेंट को देख रहे हैं। तो जहाँ पे हमें हर चीज को बहुत सोच समझ के उस चीज को कहते हैं ना आगे ले जा, अगर कोई मुझे कहेगा ये करने से आप एम्पावर्ड हो, तो आपको अपने आप से 5 सवाल पूछने की जरूरत है, क्या मैं एम्पावर्ड हूंगी ये करने से या नहीं हूंगी। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर बॉडी, आपकी बॉडी क्या है, आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, आपके खुद के स्टैंडर्ड्स क्या है सुंदर होने के, ठीक है, क्या चीज आपको डिप्रेस्ड कर रही है, क्या चीज नहीं कर रही है, क्या चीज आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही है, क्या नहीं कर रही है।
4: डॉक्टर मुक्ता से मैं इसी के बारे में कॉन्टिन्यूटी में ही एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे कि डॉक्टर रश्मि ने बोला, एक वर्ड यूज किया सूडो फेमिनिज्म, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ओपनली किसी भी चीज के बारे में बात करना मीडिया में, ओपनली अपने आप को प्रेजेंट करना आजकल फेमिनिज्म की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन हो गई है, आप इससे कितना वो रखती हैं?
0: जी, अगर रश्मि जी की बात बोलूं तो मैं आई थिंक पूरा उन्हीं के लाइन में पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते हुए बात करूंगी, लेकिन हाँ ये वो आप कहते हैं सामाजिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो समय के साथ बदलते भी हैं। सूडो फेमिनिज्म जैसा भी एक कॉन्सेप्ट है जो हो सकता है आज उसकी एक डेफिनेशन है आने वाले समय में और उसमें और डेवलप हो डेफिनेशन। तो अगर हम मीडिया में ही वुमेन के पोर्ट्रेयल की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा बात करते हैं महिला सशक्तिकरण का। अब वो सशक्तिकरण जो है उसके अपने ही बहुत सारे डेफिनेशन हैं। हमें लगता है कि यदि महिला आजाद है, मतलब अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए आजाद है, वो सशक्त है। अगर वो अपना परिवार चलाने में इकोनॉमिकली अपने हस्बैंड की भागीदारी कर रही है तो वो सशक्त है, ठीक है। तो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि हम सशक्तिकरण के नाम पे मीडिया में क्या परोस रहे हैं। इसमें जैसे आप देखें कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें या सिनेमा की बात करें ज्यादा, क्योंकि वहां पे एक हमें बड़ा कॉन्टेंट मिलता है, एडवर्टीजमेंट में छोटे कॉन्टेंट्स मिलते हैं। तो जैसे एक सीरीज है जिसके बहुत सारे एपिसोड्स चल रहे हैं या उसके फर्दर सीरीज चल रहे हैं, 4 more shots प्लीज आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उसमें भी महिलाएं हैं, लेकिन क्या वहां जो पोर्ट्रेल है हम उसे सशक्तिकरण कहेंगे? मतलब बीइंग अ वुमन, मैंने उसका एक एपिसोड या दो देखे, मुझे वो लगा कि नहीं, वो पोर्ट्रेल ऑफ वुमन नहीं चाहती मैं, मतलब मैं भी एक महिला हूँ, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो, क्योंकि वो मैं उसके साथ एसोसिएट अपने आप को नहीं कर पाती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि समाज में महिलाओं को रिस्पेक्ट चाहिए तो मैं नहीं चाहूंगी कि ऐसी महिला मैं नजर आऊं, और मैं हूं भी नहीं, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाती उससे। तो अगर मीडिया की जिम्मेदारी है तो क्यों नहीं हम ऐसा कुछ पोर्ट्रे करें जिसमें जो महिलाएं हैं वो वैसी दिखें। सशक्तिकरण के नाम पर कुछ बहुत अलग तरीके से उन्हें पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए ना। तो मैं आई थिंक ये कहूंगी, आप सूडो जर्नलिज्म या सूडो सॉरी फेमिनिज्म, इसकी अगर हम बात करें तो मैंने आपको कहा ना सबका अपना देखने का नजरिया है, ठीक। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं, मैंने बहुत सारे पुरुषों को महिलाओं के लिए अच्छी बातें करते सुना है और मैंने उन्हीं लोगों के अगेंस्ट लोगों को बोलते भी सुना है कि वो तो फेमिनिस्ट है। तो ये जो एक टाइट हो जाते हैं ना कि आप महिलाओं के बारे में बात करें तो आप फेमिनिस्ट है, ये विचारधारा भी नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक मीडिया कहीं ना कहीं कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हाँ जैसे कंज्यूमरिज्म है आप उससे पीछे नहीं हट सकते, हम सिर्फ कॉन्टेंट बनाए और इन रिटर्न हमारे को कुछ भी नहीं मिले ये भी नहीं हो सकता, बट हाँ कितनी जरूरत है और वो कैसे पहुंचाया जाए, जैसे उत्सव जी ने भी बहुत अच्छे से बोला, उन्होंने बताया कि हमें समझ डेवलप करनी है, और आई थिंक यही सबसे बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया दोनों रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हाँ हमारा ऑडियंस इतना समझदार होना चाहिए कि जो उसे दिखाया जा रहा है उसे कैसे परसीव
4: करता है। बिल्कुल, डिस्कशन में हमारे साथ प्रवीण जैन जी भी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से हमारे बाकी अतिथियों ने बताया कि मीडिया में वुमेन को किस तरह से आज रिप्रेजेंट किया जा रहा है या फिर पहले से अब तक कितना बदलाव आया है, उसी को आगे ले जाते हुए मैं आपसे सिनेमा को लेकर सवाल पूछना चाहूंगी कि सिनेमा में जैसे कि पहले हम देखते थे तो औरतों के रोल्स होते थे वो सिर्फ और सिर्फ हीरो के आजू बाजू नाचने के या उनसे सिर्फ उनका लव इंटरेस्ट होना, सिर्फ इतना ही उनका होता था, लेकिन अब जो हम सिनेमा देख रहे हैं उसमें अब उन्हें बहुत ही सशक्त महिला के तौर पर भी दिखाया जा रहा है, मेन लीड्स में भी दिखाया जा रहा है, पूरी की पूरी सीरीज भी वुमेन ओरिएंटेड हैं जो कि बहुत हिट भी हो रही हैं, लेकिन अभी भी

0: वुमेन तो मेरे आसपास ही कहीं होती है, पर वो हो सकता है पुलिस वाली हो, पुलिस डायरेक्टर हो या किसी बड़े इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में हो, वो दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी भी उसका जो प्रतिशत है, अगर हम देखें कि मेल प्रतिशत जो फिल्में आती हैं ओटीटी आती है उसके मुकाबले कम है, और एक दो कुछ को छोड़ दिया जाए तो उनमें ज्यादातर कुछ में उनको ग्लैमरस ही दिखाने की कोशिश की जा रही है। इवन इन सम कॉप फिल्म तो उसमें भी दिखाया जा रहा है कॉप है, फीमेल है, स्ट्रॉन्ग है,
1: बट उसमें भी पूरा
0: ग्लैमर घुसा दिया जाए कि वो हैज टू बी लाइक फिल्म फाइटर टाइप की, बट ऐसा जरूरी नहीं हर औरत स्लिम फिट वैसी ही हो लेकिन वो पोटे पुलिस वाली ना हो सकती हो, जबकि रियल लाइफ में हम देखें तो ऐसा नहीं होता है कभी। तो प्रतिशत कम है और इसमें समाज को औरतों को भी स्वीकार करने की जरूरत
1: मतलब
0: है।
1: आप ये कह रहे हैं कि जैसे अगर साधारण पुलिस वाली को देखा जाए, हाँ, जो हमारे समाज में हम देखते ही है, हाँ, आते जाते जाए, वो ट्रैफिक पुलिस में हो या फिर किसी इन्वेस्टिगेशन में हो, तो उनका जो आउटफिट है वो सेम आउटफिट आप मूवी में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जबकि मेल्स के लिए हम यूज करते हैं, पर फीमेल्स के लिए जो आउटफिट यूज किया जाता है वो उसमें भी वो लोग ग्लैमर फैशन और इस तरीके की चीजें डाल देते हैं,
0: फिटनेस को दिखाया जा रहा है जबरदस्ती। भाई आप कॉप, एक जो इंटेलिजेंट कॉप होता है उसकी बुद्धि से उसको इंटेलिजेंट माना जाता है, ना कि उसकी फिटनेस अच्छी चीज होती है, लेकिन वो एक प्रायोरिटी नहीं होती कि वो स्लिम फिट ही हो हमेशा। तो ये मेरे को लग रहा है रीजन है कि अभी भी मीडिया में इस तरह का पोर्टल कम किया जा रहा है, जो कि इसको बढ़ाने की जरूरत है और लोगों को भी ऐसे अपनी समझ इस बारे में, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि समझ विकसित करने की जरूरत है, जो कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं।
1: जी आपने बहुत सही बात करी प्रवीण जी। उत्सव जी आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से हम टीवी न्यूज चैनल्स में देखते हैं, तो टीवी न्यूज चैनल में हमने शुरू से ही देखा है कि विमेन जो है वो सॉफ्ट न्यूज कवर कर रही हैं, पेज 3 न्यूज कवर कर रही हैं, मेल्स जो है वो हार्ड न्यूज कवर कर रहे हैं, या फिर औरतें जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के लिए बनी हुई है कि कैमरे के सामने स्क्रीन पे बैठना है। उनमें भी बहुत सिलेक्टेड विमेन ही है जो आज ऊंचाइयों पर है, और उनके साथ भी अगर हम देखा जाए तो उसमें भी खूबसूरत महिलाएं ही हैं ज्यादातर। तो आपको ये क्या लग रहा है कि अभी भी हमारे यहाँ पे जो ब्यूटिफिकेशन है या फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन है या बॉडी इमेज जिस तरह की है, यही चीज आज भी काम कर रही है?
2: जहाँ तक आपने कहा खूबसूरत होना, एक न्यूज एंकर जो मैं डीडी नेशनल पे सुना करता था, सुकन्या बाला कृष्णा
1: जी,
2: जिनको देख के ही ऐसा भारतीयता की जो महक होती है जिस तरीके से वो, लेकिन आज मीडिया ने, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मीडिया जो चीज आपको देगा वही आप कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं।
1: बिल्कुल।
2: यहाँ पे कई ऐसे कम्युनिकेशन की थ्योरीज अप्लाई करने के बाद और बेतुके ऐसे कई सवाल खड़े करने के बाद, क्योंकि कई मीडिया सिर्फ टीआरपी को लेकर काम कर रही होती है, वो संजीदा नहीं है महिला को लेकर के, और जहाँ कोई संजीदगी नहीं है वहाँ पे विचार नहीं पनपेगा। पहले विचारों के साथ अभ्यास किया जाता था, जहाँ अभ्यास खत्म हो गया तो आप कुछ भी परोस सकते हैं, और सामने वाला व्यक्ति जो है उसके पास आज की डेट में समय नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इन शॉर्ट ऐसी क्या जरूरत पड़गी कि अखबार जो है, अब लोग इन शॉर्ट में खबरों को जानना देखना पसंद करते हैं, क्योंकि व्यक्ति अब समय नहीं देना चाह रहा, ना ही रिश्तों को, ना ही अपने जीवन को, ना ही अपने कार्यशैली को। कार्यशैली ही उसको जो है चला रही है, अपने जीवन को चला रही है, और वो फिर जो भी कंज्यूम करता है वही वो सामने निकाल के देता है। तो सिर्फ उसका दिनचर्या जो जब शुरू होता है तो कई ऐसी चीजें, कई ऐसे सवाल, तो मीडिया जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका दायित्व अब और बढ़ गया है। उसका जैसे जैसे दायरा बढ़ता जा रहा है उसका दायित्व बढ़ता जा रहा है। मुक्ता जी ने कहा कि कई ऐसे जो है समाज में ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद एक तरफ आप समझ पा रहे हैं कि महिला सशक्त हो रही है, लेकिन क्या वह सही कंटेंट दे रहा है कि नहीं। ओटीटी का एक दायित्व तो होता भाई 18+ कंटेंट है। 18+ कंटेंट का मतलब, कहने का मतलब यह है कि उसमें आप भद्दापन भी दिखा सकते हैं, अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब 18+ कंटेंट आप ये तो नहीं जान पा रहे ना कि कौन कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे ओटीटी हो चाहे कोई भी हो, हर एक व्यक्ति का एक विश्वास और एक दायित्व तो होना चाहिए कि वह जहाँ कहीं भी महिला, तो उसको महिला के नाम से ना रिप्रेजेंट करे, उसको पहले जीवन के नाम से रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो पहले जीवन है, महिला बाद में है। मेरा मानना है कि अब पशु पक्षी को भी आप, वो पुरुष है, वो नर है, वो मादा है, पहले जीवन देखिए, पहले श्वसन क्रिया देखिए कि वो चलता फिरता एक जीवन है, तब आप समझ पाएंगे कि वो महिला नहीं, पहले जीवन है। शरीर के आवरण से कौन खूबसूरत है, कौन भद्दा है, इसको जान लेने से शायद आपको क्षणभंगुर आत्म तृप्ति हो सकती है, लेकिन आप खुद में जब एनालाइज करेंगे जीवन के उन आखिरी पलों में, तो वो सारी जो है कृतियां आप तक आएंगी, आपका आएंगे, आपके नजरों के सामने आएंगे। तो महिला कोई उपभोग या संभोग या कोई भी ऐसा शब्द यूज कर सकते हैं, मुझे इस चीज का कोई डर नहीं है कि मैं

0: शब्दों को लेकर के हाँ संजीदा हूँ, शब्दों को लेकर संजीदा हूँ, लेकिन हाँ महिला सिर्फ एक दायरे के लिए नहीं, महिला महिला है, पुरुष पुरुष है, फिर कहता हूँ जीवंत है, जीवन है, श्वसन क्रिया उसमें भी है। व्यक्तिगत रूप से आप देखेंगे तो महिला का सम्मान या पुरुष का सम्मान, फेमिनिज्म का मतलब यह नहीं कि फेमिनिज्म ही आप एक महिला होकर के, फेमिनिज्म का मतलब है जहाँ बोथ द जेंडर्स आर बीइंग रिप्रेजेंट एज इक्वल,
1: राइट,
0: तो दोनों जेंडर को समान रूप से देखें। अब तीसरे जेंडर की बात आती है तो उसको भी समान रूप से देखिए, क्योंकि लड़ाई ये उसकी नहीं है, लड़ाई इस मानव सभ्यता और समाज के साथ हम सब की लड़ाई है। जिस दिन यह दायित्व तो हम सब ने उठा लिया तो शायद हमें इस चीज का डर ही नहीं रहेगा कि हमारी घर से बहने माताएं बहने बाहर जा रही हैं और उनके साथ जो है कोई ऐसा अभद्र व्यवहार होगा, तो ये दायित्व तो हम सब का बनता है।
1: जी धन्यवाद आप सभी का। आज जो हमने बात यहाँ पर की है उसमें एक बात तो निकल कर यही आई है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा। कुछ चीजें पॉजिटिविटी की तरफ भी जा रही हैं, सकारात्मक भी हैं, कुछ चीजें नकारात्मक भी हैं, लेकिन अभी भी हमें औरतों की स्थिति को मीडिया में सुधारने की बहुत जरूरत है। इसके लिए डॉक्टर उत्सव जी हैं, डॉक्टर मुक्ता मर्तोलिया जी हैं, या फिर डॉक्टर सीपी रश्मि हैं, या प्रवीण जैन जी हैं, सभी ने एक ही बात कही है कि समाज को अभी बहुत सुधरना है, बहुत समझना है, बहुत सीखना है। तो पहल खुद से होती है, सबसे पहले हमें अपनी सोच को सुधारना है और फिर उसके बाद हम किसी का भी जो चित्रण है वो एक जीवंत आत्मा के तौर पर हम कर पाएंगे, एक जीव के तौर पर कर पाएंगे, हम उसे महिला या पुरुष के तौर पर नहीं करेंगे। तो महिला या पुरुष कोई भी है, वो एक जीव है और उसी के हिसाब से वो क्या डिजर्व करता है अपनी लाइफ में, यही हमें चित्रण हमेशा करना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो या फिर कोई भी सामाजिक व्यवस्था हो वहाँ पर। सभी अतिथियों का हमारे इस शो में आने के लिए और अपने विचार इस विषय पर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, हम फिर से आएंगे लेकर कुछ ऐसे ही विषय जिसमें कि हमारे साथ इसी तरह के एक्सपर्ट होंगे और वो अपनी राय आप तक रखेंगे। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। बने रहिए सुनो शारदा 90.8 के साथ। मैं थी आपके साथ किरण, नमस्कार।
3: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
4: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं, चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया, गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सोरो

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीवी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
3: जी।
2: प्लीज कैरी ऑन।
3: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
2: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
3: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
2: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: भाई मैं हूं थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूं अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.4।

0: आठ FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
3: मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन। वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा। कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा?
1: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी, जैसे रहुआ कहला रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे
3: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा नहीं होके दे दीदी।
1: बहुत बढ़िया।

0: या मलेरिया दिमागी बुखार से बचे तबेगा। बस अमली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़प जा मच्छर बन पर भारी।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनोशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनि शाला में।
2: प्यारे बच्चों, आज मुझे आपसे बात करने में बहुत मजा आने वाला है, लेकिन ये मजा सिर्फ बात करने का नहीं है, ये मजा तो कहानी कहने का भी है। तो आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका

नाम है मजा आ गया। तो अब कहानी का नाम सुनकर ही आपके चेहरे पर आई मुस्कान देखकर ऐसा लगता है कि कहानी सुनने में आपको मजा आने वाला है ना। तो शुरू करें हम आज की कहानी। लीजिए, कहानी के चक्कर में मैं आपको ढेर सारा प्यार दुलार और नमस्कार कहना तो भूल गई। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेर सारा प्यार नमस्कार और लाड दुलार। तो आइए हम आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मजा आ गया। पता है बच्चों, दो बच्चियां थीं, एक का नाम था तोसिया और एक का नाम था मिली। मिली और तोसिया दोनों बहनें हैं। तोसिया और मिली को एक पेड़ बहुत पसंद था, आम का पेड़, खूब बड़ा, खूब घना पेड़, और उस पर ढेर सारे आम लगे हुए थे। वे उस पेड़ के पास रोज खेलने जाती थी, कभी छुपन छुपाई खेलती तो कभी पेड़ के तने से लिपटकर कोई गीत गाती। पता है बच्चों, उसी पेड़ पर एक चिड़िया और एक इल्ली रहती थी। उन्हें भी पेड़ पर बहुत मजा आता था। चिड़िया ने तो पेड़ के पत्तों में अपना एक घोंसला बना रखा था और उस घोंसले में कई सारे छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन बच्चे अभी अंडे में ही थे। अंडे अभी फूटे नहीं थे, इसलिए बच्चे बाहर नहीं आए थे। एक दिन पता है क्या हुआ? एक दिन जोर से हवा चलने लगी। उस हवा की वजह से पेड़ कभी दाएं तो कभी बाएं झूलने लगा, और पेड़ के झूलने के साथ ही इल्ली और चिड़िया का घर भी झूलने लगा, कभी दाएं तो कभी बाएं। इल्ली भी पेड़ के साथ साथ झूल रही थी। पता है, चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आ गई और पेड़ फिर भी बहुत जोर से दाएं बाएं झूल रहा था। इल्ली को भी बहुत मजा आ रहा था पेड़ के साथ दाएं बाएं झूलने में। चिड़िया पेड़ के चारों तरफ उड़ने लगी और वह वापस अपने घोंसले में आ गई। थोड़ी देर में हवा रुक गई। चिड़िया को अपने घोंसले में आने के बाद बहुत राहत मिली कि चलो अच्छा है, हवा बंद हो गई और पेड़ का हिलना भी रुक गया। हवा के रुकने के साथ ही तोसिया और मिली फिर से खेल खेलने लगी। कभी वे लुका छिपी का खेल खेलती तो कभी वह पेड़ के चारों तरफ पकड़म पकड़ाई खेलती। उन्हें बहुत मजा आया पेड़ के चारों तरफ खेलने में। तो ये तो थी कहानी मजा आ गया। आपके भी ऐसे बहुत सारे अनुभव होंगे जब आपको बहुत सारा मजा आया होगा, अपने दोस्तों के साथ खेलने में, अपने भाई बहनों के साथ खेलने में और खूब सारी हवा का आनंद लेने में। जब बहुत तेज आंधी चलती है तो पेड़ पौधे भी हिलने लगते हैं, और उन पेड़ पौधों पर जो जो चीजें होती हैं वे भी पेड़ के साथ साथ हिलने लगती हैं। तो उनके तो मजे आ जाते हैं। उनके लिए पेड़ का हिलना मतलब पेड़ का झूला बन गया, और फिर चिड़िया हो या चिड़िया के बच्चे हो या इल्ली हो, सब पेड़ के साथ झूला झूलते हैं। तो ये तो कहानी थी मजा आ गया। अब हम एक और कविता सुनाने वाले हैं आपको, और इस कविता में भी झूले की बात है। तो हम शुरू करते हैं आपके लिए यह कविता, जिसका नाम है झूला। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। कैसी लगी आपको कविता झूला? आप भी इस कविता में आने वाले बहुत सारे शब्दों के साथ झूल रहे होंगे। जैसे डाली झूम रही थी, वैसे आप झूल रहे होंगे। जैसे पत्ता पत्ता झूल रहा था, आपका मन भी झूलने लगा होगा। और बारिश के तो क्या ही कहने, उसमें तो हर बच्चे को बहुत मजा आता है।
प्यारे बच्चों, इस कविता में ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं जिसमें ल की आवाज है। क्या आप पहचान पाएंगे ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें ल की आवाज है? शाबाश, झूला में ल की आवाज है, लेकिन पहले या बाद में? ल की आवाज बाद में है, पहले तो झ की आवाज है, झूला।

0: मियाँ ने क्या किया?
1: झरने का पानी उड़वाया, काला काला झाग बनाया, तब झगड़ू को गुस्सा आया, मिला न पानी तो झल्लाया।

आया समझ में? तो झूला में ला अंत में है, यानी कि शब्द के अंत की आवाज है ला। अब मैं कविता की एक और पंक्ति पढ़ती हूँ और आप बताइए कि क्या उस पंक्ति में ल की आवाज वाला कोई शब्द है या नहीं। मैं शुरू करूं? ठीक है। अम्मा आज लगा दे झूला, कितने शब्द हैं? एक, और शब्द क्या है? झूला। इस झूले पर मैं झूलूंगा, कितने शब्द हैं? दो। वेरी गुड। और शब्द कौन कौन से हैं? झूले, झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर, इसमें तो एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें ल की आवाज हो। आसमान को मैं छू लूंगा, कितने शब्द हैं? एक। वेरी गुड। और शब्द कौन सा है? लूंगा। शाबाश। झूला झूल रही है डाली, कितने शब्द हैं? तीन। वेरी गुड। और शब्द कौन कौन से हैं? झूला, झूल, डाली। वेरी गुड। और तीनों ही शब्दों में ल की आवाज कहाँ है? शुरू में है या आखिर में? आखिर में है ल की आवाज, झूला, झूल, डाली। झूल रहा है पत्ता पत्ता, अब यहाँ पर ल की आवाज वाला कौन सा शब्द है? झूल। शाबाश। तो इसका मतलब कितने शब्द हुए? एक या दो? एक। इस पंक्ति में एक ही शब्द है जिसमें ल की आवाज है। इस झूले पर बड़ा मजा है, इसमें कितने शब्द हैं? ल की आवाज वाले? एक। और शब्द कौन सा है? झूले। वेरी गुड। चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, उफ, इस पंक्ति में तो बहुत सारे ल हैं। चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, चल में भी ला है, दिल्ली में भी ला है, ले में भी ला है, चल में भी ला है, कलकत्ता में भी ला है। तो ये तो बहुत प्यारी सी पंक्ति है। इस पंक्ति के हर शब्द में ल की आवाज है। चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। तो कितने शब्द हुए? एक। दो। ना। तीन। चार। थोड़ा और आगे। पांच। शाबाश। ये हुए पांच शब्द। अब तो आप शब्दों में ल की आवाज को पहचानते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि आप ऐसी बहुत सारी बातें बोलते हैं जिसमें ल की आवाज होती है, बस हम उस ल की आवाज को आज अलग से पहचान रहे हैं। लेकिन इस ल की आवाज से बनने वाले बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बातें आप अक्सर करते हैं। जैसे झूला झूलने की फरमाइश रखते हैं तो आप ल की आवाज बोलते हैं। अगर आपको कहीं सैर सपाटे पर जाना हो तो आप कहते हैं मैं भी चलूंगा, आप कहते हैं मैं भी चलूंगी, आप कहते हैं हम भी चलेंगे, तो इसमें भी तो ल की आवाज है। और एक और चीज है जो सब बच्चों की मनपसंद चीज है, और वह क्या है? लट्टू। हाँ हाँ, हो सकता है, या फिर लड्डू। बिल्कुल, लड्डू भी हो सकता है। लड्डू हर बच्चे को पसंद होता है। अब ये लड्डू चाहे आटे का बना हो या बेसन का हो या फिर बूंदी का हो, तो लड्डू जैसे बच्चे अक्सर लड्डू खाते हुए दिख जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें ल की आवाज है, तो क्यों ना हम झटपट उन शब्दों को दोहरा लें। तो आइए आप सुनिए शब्द और बताइए कि इसमें ल की आवाज है या नहीं। तो हमारा पहला शब्द है लीची। ल की आवाज है? हाँ है। और अगला शब्द है ढोल, इसमें भी ल की आवाज है, लेकिन शुरू में है या आखिर में? आखिर में ल की आवाज है। ढोलक। अब ल की आवाज कहाँ है? ढोलक, बीच में। वेरी गुड। ढोलक। एक और शब्द है अलमारी, यहाँ ल की आवाज कहाँ है? बीच में। किसके बाद?
आ के बाद। तो यह शब्द है अलमारी। एक और शब्द है लोमड़ी। ल की आवाज कहाँ है? शुरू में। वेरी गुड। तो अब आप ल की आवाज को पहचानने लग गए हैं। तो हम बच्चों एक खेल खेलते हैं, तैयार हैं?

0: हम शुरू करते हैं खेल झुम्मा झुम्मी का। हमारा पहला शब्द है ढोल, झुम्मी ढोलक, झुम्मी लपेटना, झुम्मी बगीचा, क्या होगा? झुम्मा। शाबाश। हमारा अगला शब्द है लड़का, झुम्मी झूला, झुम्मी मेला, झुम्मी आंगन, झुम्मा आंगन में ल की आवाज नहीं है। आगे चलें। लोमड़ी झुम्मी सुहानी, झुम्मा सिलाई, झुम्मी दिखना, झुम्मा मेला, झुम्मी घर, झुम्मा। अब कुछ और शब्द हमारे पास बचते हैं, हम शुरू करें? ठीक है। नल झुम्मी डाली, झुम्मी झाड़ू, झुम्मा टायर, झुम्मा दरी, झुम्मा आलू, झुम्मी रेल, झुम्मी खेल, झुम्मी मजा, झुम्मा।
1: ला से लड़का, लाखन ला से लकड़ी लगातार।
2: लकड़ी के गुड्डे गुड़िया ले लो, लाठी और लंगूर ले लो, लोटा और लट्टू भी ले लो।

0: राजन ने सोचा,
1: राजा देगा ढेरों उपहार।
0: राजा ने पर डांट लगाई, जोर से भी ललकार।
2: लाखन।

0: बस याद इतना रखना है कि हाँ की जगह हम कह रहे हैं झुम्मी और ना की जगह हम कह रहे हैं झुम्मा। तो बस झुम्मा झुम्मी को आपको याद रखना है। आप चाहें तो हाँ और ना के लिए कुछ और मजेदार शब्द खोज सकते हैं, जैसे हाँ के लिए जलेबी और ना के लिए लड्डू। अब ऐसा ना हो कि जलेबी और लड्डू कहते कहते आपके मुंह में पानी आ जाए और आप सारा खेल छोड़कर सबसे पहले रसोई में भागे कि नहीं पहले हमें जलेबी दीजिए या हमें लड्डू दीजिए। तो आप अपने शब्द चटपटे भी रख सकते हैं, जैसे इमली और जैसे आम। तो बस आप ऐसे ही चटपटे मजेदार मीठे गुलगुले जैसे नाम रखिए और इस खेल को अपने दोस्तों के साथ जरूर खेलिए। आप चाहें तो इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द या इन शब्दों से बनने वाले एक कहानी भी तैयार कर सकते हैं, जैसे एक दिन की बात है, लड्डू नाम का एक बच्चा था। लड्डू का नाम था लड्डू और सब प्यार से उसे लड्डू जी कहते थे। एक दिन लड्डू जी की क्लास में एक लड़की थी, उस लड़की का नाम था झुमकी। तो झुमकी ने कहा, लड्डू ये तुम्हारा नाम किसने रखा है? अब लड्डू बेचारा उदास सा रहता था क्योंकि सब उसे उसके नाम से चिढ़ाते थे। लड्डू ने झुमकी से कहा, पता नहीं झुमकी मेरा ये नाम किसने रखा है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नाम बदल दूं। लेकिन झुमकी ने कहा, नहीं नहीं लड्डू, तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है, बहुत मीठा है, बिल्कुल एकदम लड्डू जैसा। लेकिन झुमकी, सब बच्चे मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। तो झुमकी ने कहा, तो क्या हुआ, उन्हें कहना है तो कहने दो, तुम बस उनकी बातों पर ध्यान मत दो। धीरे धीरे लड्डू बड़ा हो गया। अब वह बड़ा हो गया तो भी उसका नाम रहा लड्डू। अब उसने सोचा कि अब मुझे अपना नाम बदल लेना चाहिए। लेकिन वह सोचता रहा कि वह अपना कौन सा नाम रखे, प्यारा सा नाम। लेकिन उसने सारे नाम ट्राई किए, चाहे ये नाम था मदन या फिर अमर या फिर शादाब या फिर अक्रम, लेकिन उसे कोई नाम सूझ ही नहीं रहा था। तो उसने सोचा कि ठीक है, मेरा नाम तो लड्डू ही सही है। झुमकी ने भी लड्डू को यही समझाया कि लड्डू, तुम्हारा नाम जो भी हो वह बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी पहचान हमारे काम से होती है, तो बस हमें अच्छे काम करने चाहिए और हमारी अपनी पहचान बन जाएगी। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमारा नाम लड्डू है या फिर हमारा नाम झुमकी। तो ऐसे ही लड्डू और झुमकी बहुत अच्छे दोस्त बन गए और उनकी दोस्ती आज भी याद की जाती है। अब इस कहानी को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो ढोलक के ऊपर भी कोई कहानी बना सकते हैं। जैसे एक बार की बात है, एक गांव था, गांव का नाम था नंदनवन। उस नंदनवन में एक ढोलक रहती थी, ढोलक का नाम था ढोलक और ढोलक तो थी एकदम ढोल जैसी थी, ढोल जैसी नहीं एकदम ढोलक जैसी थी, बहुत प्यारी सी छोटी सी। एक दिन क्या हुआ कि उस गांव में एक लड़का रहता था, उसे ढोलक बजाना बहुत पसंद था। वह ढोलक पर थाप देता और फिर गीत गाता। पता है बच्चों उस लड़के का नाम क्या था? उस लड़के का नाम था मोहन। मोहन को ढोलक पर थाप देकर गीत गाना बहुत पसंद था। एक दिन वह एक गीत गा रहा था और गीत गाते गाते वह ढोलक पर थाप दे रहा था, तभी से फटाक की आवाज आई और ढोलक का एक सिरा फट गया। अब ढोलक को ठीक कराने के पैसे मोहन के पास नहीं थे, लेकिन बच्चों मोहन ने गीत गाना नहीं छोड़ा और ढोलक को उसने यूं ही एक तरफ छोड़ दिया और खूंटे पे टांग दिया। बहुत समय बाद एक बार बहुत तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश कि चारों तरफ पानी भर गया। घर में जितने भी कीट पतंगे थे, कीड़े मकोड़े थे, चींटे थे, चींटियां थी, चिड़िया थी, सब आश्रय ढूंढ रहे थे कि सूखी जगह मिले तो वहां दुबक जाएं। तभी सबको दीवार पर टंगी हुई वह ढोलक दिखाई दी जिसका एक सिरा फटा हुआ था। अब वह एक गुफा की तरह हो गया था तो सारे जीव जंतु उस ढोलक के अंदर जाने लगे। सब जीव जंतुओं ने ढोलक का बहुत शुक्रिया अदा किया कि अगर आज तुम नहीं होती तो हम पानी से नहीं बच पाते। ढोलक ने सभी का स्वागत किया कि आइए मेरे घर में आप सभी का स्वागत है। तो अच्छा हुआ कि मोहन ने ढोलक को ठीक नहीं करवाया और वह ढोलक चाहे वह फटी ढोलक क्यों न थी वह ढोलक सभी के आश्रय का हिस्सा बनी। तो बस आप ऐसी ही कहानी बना सकते हैं और इन कहानियों को आगे भी बढ़ा सकते हैं और आप चाहें तो इन शब्दों के इर्द गिर्द अपने अनुभव लिखकर हमें भेज सकते हैं। फिर इन अनुभवों में बात चाहे झूले की हो या लड्डू की हो या लट्टू की हो या फिर ढोलक या अलमारी की हो, आपके पास ढेर सारी बातें हैं हमसे कहने के लिए और हमारे पास ढेर सारा समय है आपकी बातें सुनने के लिए। तो आप अपनी बातें हमें लिखकर जरूर भेजिएगा। हमारा पता है earlyliteracy.ncrt@gmail.com। मैं फिर से दोहरा देती हूँ earlyliteracy.ncrt@gmail.com। तो हम आपकी प्यारी सी बातों का इंतजार करेंगे और मैं उषा दीदी आप सबसे तब तक के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार।
1: तो साथियों अभी आपने सुनी कक्षा एक की ध्वनिशाला। विषय विशेषज्ञ थी प्रोफेसर उषा शर्मा NCERT। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: हाय नमस्कार मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें।

ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को। सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेन के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 21वीं कड़ी हवा में जल। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने वातावरण के बारे में जाना। हमारी धरती हवा यानी वात का आवरण ओढ़े है। वायुमंडल धरती पर गर्माहट बनाए रखता है। सूरज की पराबैंगनी किरणें और अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्काओं से हमारी रक्षा करता है और वायुमंडल की अलग अलग परतें किस प्रकार अपना अपना काम करती हैं। तो लीजिए आगे सुनिए विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 21वीं कड़ी हवा में जल। धरती

0: वसुधा
1: जी।
0: वसुधा वसुधा, अरे क्यों भाई, छुट्टी का दिन होने से आज भोजन की भी छुट्टी है क्या?
1: नहीं जी, भोजन से छुट्टी कैसे हो सकती है भला। हाँ, भोजन में देरी जरूर हो सकती है।
0: देरी? अरे भाई, अब और कितनी देर है खाना तैयार होने में। मेरे पेट में तो चूहे टुकुर टुकुर टुकुर कूदने शुरू हो गए।
1: बस आप बच्चों को भी खाने के लिए बुला ही लीजिए, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा।
0: अरे हाँ हाँ, अभी बुलाता हूँ मैं। सृष्टि, मानव, खाना खाने के लिए आओ जल्दी भाई।
2: लो पापा, मैं तो आ गई।
3: हाँ। पापा, ये कार्टून शो देखकर आता हूँ, आप लोग खाना शुरू कीजिए।
2: अरे मानव, सुबह से ही तो टीवी देख रहा है, खाना तो टाइम पर खा ले।
0: अरे हाँ मानव, खाना समय पर खाना चाहिए। चलो जल्दी आओ खाने के लिए, कार्टून शो तो दिन भर चलते रहेंगे।
3: क्या पापा, एक संडे का दिन ही तो मिलता है मुझे पसंदीदा कार्टून शो देखने के लिए, उसमें भी आप मुझे टीवी नहीं देखने देते हो।
0: बेटा पहले खाना खा ले, फिर टीवी देखते रहना। चलो आओ जल्दी आओ।
3: अरे आप शुरू तो कीजिए, मैं अभी आता हूँ।
2: हाँ, आज तो खाने की बड़ी अच्छी महक आ रही है।
0: अरे सृष्टि बेटा, महक तो आएगी ही, आज तुम्हारी मम्मी ने रविवार का स्पेशल खाना जो बनाया है।
2: अच्छा, तो आज मम्मी ने खीर बनाई है, क्यों मम्मी?
1: हाँ, तुम सभी को खीर बहुत अच्छी जो लगती है ना, इसीलिए।
2: खीर का सबसे ज्यादा दीवाना तो मानव है।
3: खीर? अरे वाह मम्मी, मैंने सुना है कि आज खीर बनी है।
2: लो आ गया मानव।
3: मम्मी खाना तैयार है ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है।
1: हाँ बेटा, तू हाथ पैर धोकर आ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ।
2: मम्मी खाने के लिए विवेक भैया का इंतजार कर लेते हैं ना, सभी साथ में खाना खाएंगे।
1: पर विवेक तो 3-4 बजे तक आएगा ना।
0: हाँ सृष्टि, आज विवेक के आने का कोई समय निश्चित नहीं है। उसके दोस्त वरुण के यहाँ हैंडपंप लग रहा है, अरे वो तो काम पूरा होने पर ही आएगा।
3: मम्मी आज खीर बनाई है ना?
1: खीर के साथ पूरी भी है माना।
3: अरे वाह, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, खीर और पूरी।
2: अच्छा मानव, यहाँ तेरे मुंह में पानी आ रहा है और उधर नल से पानी बह रहा है।
0: मानव फिर नल खुला छोड़ आया। तुम्हें कितनी बार समझाया है नल को ठीक से बंद करके आया करो।
2: ना जाने इसे किस बात की जल्दी रहती है कि नल अच्छे से बंद ही नहीं करता।
3: दीदी मैं तो नल बंद करके आया था।
2: नल बंद करके तो आया था, मगर आधा, जिससे बहुत पानी बह रहा था।
0: बेटा मानव, लोग तो बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं, और एक हमारा मानव है कि पानी की कीमत समझता ही नहीं, जब देखो नल ठीक से बंद ही नहीं करता।
1: अरे खाना लगा दिया है, खाना खा लो जल्दी से, बहस बाद में कर लेना। चलो बैठो मानव।
0: बैठो बैठो। वाह वेरी गुड,
3: क्या खीर बनाई मम्मी, वाह। मम्मी आज तो खीर का रंग पीला दिख रहा है।
2: पीला नहीं मानव, केसरिया।
1: मानव, खीर में केसर डालने से खीर का रंग केसरिया हो गया है, समझा?
0: आहा, क्या बात है वसुधा, आज तो केसरिया खीर बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है भाई।
1: खीर में सूखे मेवे जो मिलाए जी।
0: और वसुधा इसी बात पर ठंडा पानी पिला दो बस।
3: और मम्मी मुझे भी पानी का दूसरा गिलास देना।
1: दूसरा गिलास? क्यों, क्या हो गया?
3: वो इस गिलास की बाहरी परत गीली है, जरूर इस गिलास में बारीक छेद होंगे।
2: छेद नहीं है मानव।
3: छेद नहीं है तो फिर गिलास बाहर से गीला क्यों हो गया?
0: अरे मानव ये तो हमारे आसपास की हवा में मौजूद पानी है।
3: अरे ये क्या कह रहे हैं आप, हमारे आसपास की हवा में पानी मौजूद है?
2: हाँ मानव, गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई देने वाला ये पानी वातावरण में उपस्थित नमी ही तो है।
0: मानव, और वातावरण की इस नमी को जल वाष्प या आर्द्रता भी कहते हैं।
3: पापा मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आती है।
2: पापा जब तक मानव का ध्यान खीर खाने में है, तब तक इसे कुछ समझ नहीं आने वाला।
3: दीदी क्या करूं, मुझे खीर इतनी अच्छी लगती है कि खीर खाते हुए मुझे दूसरी बातें समझ ही नहीं आती।
0: तो पहले खीर खाना।
1: अच्छी बात है ना मानव बेटा, खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ही ध्यान देना चाहिए। गुड बॉय।
0: चलो चलो फिनिश करो जल्दी से, मेरा खाना तो हो गया, मैं तो चला टहलने।
3: मम्मी पेट तो मेरा भी भर गया पर मन नहीं भरा।
2: तेरा तो मन कभी नहीं भरेगा।
3: क्या दीदी आप भी।

0: अरे मानव, देखना तो कौन आया।
1: मम्मी, जरूर विवेक भैया होंगे।
2: भैया आप बहुत लेट हो गए आने में।
0: अरे विवेक, तूने तो 2 बजे का आने का बोला था, अब तो 5 बजने का।
3: अरे मम्मी, वरुण के यहाँ हैंडपंप का काम 4 बजे खत्म हुआ, इसीलिए लेट हो गया।
4: भैया तो क्या आप हैंडपंप लगा रहे थे?
3: नहीं मानव, दरअसल वरुण के मम्मी पापा आज सुबह ही किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे, इसलिए अकेले होने की वजह से वरुण ने मुझे बुला लिया।
4: भैया तो क्या वरुण को अकेले में डर लगता है?
3: अरे मानव, वरुण और मुझे एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना था, इसलिए मैं वरुण के घर गया था।
0: विवेक खाना खा ले बेटा, चल।
3: मम्मी खाना तो मैंने वरुण के यहाँ खा लिया था। हाँ पानी पीऊंगा, बड़ी प्यास लगी है।
0: अच्छा अच्छा, मानव विवेक भैया के लिए पानी लेकर आओ।
4: मैं
0: हाँ, तुम जाओ।
4: जी।
3: अच्छा सृष्टि, पापा कहाँ हैं?
4: भैया पापा आसन लगा रहे हैं।
3: आसन इस समय? पापा तो प्राणायाम और आसन सुबह करते हैं।
4: भैया मैं योग आसनों की नहीं बल्कि निद्रासन की बात कर रही हूँ।
3: सृष्टि तुम भी ना, सीधे सीधे नहीं कह सकती थी, पापा सो रहे हैं।
4: हाँ भैया, दुनिया गोल है, इसीलिए कभी कभी गोल मोल बातें भी कर लेनी चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: भैया ये लो पानी। और हम सब के लिए मम्मी चाय लेकर पधार रही है।
0: लो बच्चों, गर्मा गर्म चाय।
3: लाओ मम्मी।
4: मुझे इस वाले कप में चाहिए।
0: इसी में लो।
3: क्या बढ़िया चाय बनाई मम्मी। पर आज वरुण ने बहुत अच्छी चाय बनाई थी।
4: अच्छी मतलब बिना पानी वाली है ना विवेक भैया?
3: सृष्टि, वरुण ने चाय में तुलसी के पत्ते, अदरक और इलायची भी डाली थी, और हाँ दूध में पानी भी नहीं मिलाया था।
0: अरे पानी से मुझे ध्यान आया, हे मानव तू किचन का नल ठीक से बंद करके नहीं आया था, नल से पानी बह रहा था।
3: मानव, जल की बूंद बूंद अनमोल है, इसलिए हमेशा नल को सही से बंद करने की आदत डालो।
4: अरे आप सभी लोग पानी को लेकर इतना परेशान क्यों होते हो? कहीं मेरी टीचर बता रही थी कि धरती के लगभग 3/4 भाग में पानी है,
1: लेकिन मानव इस जल की 97% मात्रा समुद्री पानी के रूप में है, जो खारा होने के कारण हमारे पीने व खेतों में सिंचाई के काम में उपयोग नहीं किया जा सकता।
3: और बाकी 3% जल का भी अधिकतर भाग ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में जमा है।
4: भैया खारा जल तो नहीं, पर हाँ बर्फ में जरूर खा सकता हूँ।
0: बच्चों चाहे दुनिया में जल की कितनी भी मात्रा हो, पर हमारी कॉलोनी में तो नल एक दिन छोड़कर ही आता है। पानी की जरूरत पड़ने पर बेचारे हमारे विवेक को पड़ोस के हैंडपंप से पानी लाना पड़ता है।
3: क्या मम्मी?
4: मम्मी खाना खाते समय दीदी कुछ हवा में मौजूद नमी की बातें कर रही थी ना, तो क्यों ना हम उसी हवा के पानी से टंकी को भर लें?
1: मानव ये इतना आसान होता तो हमारे देश में लाखों लोग सुबह से शाम तक पानी के लिए ना भटकते होते।
0: बिल्कुल, पहाड़ों और रेगिस्तानों में तो महिलाओं का आधा जीवन सिर्फ पीने का पानी लाने में ही निकल जाता है।
3: मानव मम्मी सही कह रही हैं। शुद्ध जल के लिए हमारे देश में लाखों लोगों को मीलों भटकना पड़ता है।
1: और मानव रही हवा में नमी की बात, तो वो तो सतही जल के सूर्य की गर्मी से बनने वाली भाप है, पानी भाप बनकर हवा में मिलता रहता है।
4: अच्छा, तो इसीलिए छतों पर रखे पानी की टंकियों में ढक्कन लगाए जाते हैं ताकि उनका पानी भाप बनकर ना उड़े।
3: अब मानव इसमें कुछ सच्चाई तो है, पर टंकियों को इसलिए ढक दिया जाता है ताकि पानी में कचरा ना मिले।
4: भैया मम्मी भी तो हवा में नमी बढ़ाती है, मम्मी जब चाय बनाती है तब चाय की पतीली से भी तो भाप उड़ती दिखती है।
1: माँ ही नहीं, हम सब हवा

0: अधिकतर पानी हवा में नमी के रूप में इकट्ठा होता रहेगा।
1: ऐसा नहीं है मानव, धरती पर पानी एक जल चक्र के माध्यम से समुद्र से हवा में और हवा से पुनः समुद्र में मिलता रहता है।
0: ये तो ऐसा ही हुआ कि पानी को फ्रिज में रखकर बर्फ जमाया और फिर उसी बर्फ को शरबत में डाला तो वो पानी में बदल गया, है ना?
2: हाँ मानव, दुनिया में अनेक घटनाएं नियमित होती हैं, जैसे पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, सूरज का रोज उदय होना, अस्त होना,
0: और जैसे मेरा रोज रोज स्कूल जाना।
3: मानव, तुझे तो एक दिन रविवार की छुट्टी भी मिल जाती है।
1: लेकिन पृथ्वी पर जल चक्र द्वारा निरंतर जल से भाप बनती रहती है।
0: लेकिन भैया, हमें तो कार्य करने के लिए खाना चाहिए होता है, फिर धरती पर जल चक्र को भी तो कहीं से ऊर्जा मिलती है ना?
3: मानव, तेरा काम खाने से कहाँ चलता है, तुझे तो खीर भी चाहिए होती है।
1: और साथ में पूरी भी। मानव, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, सभी को अपना कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जल चक्र को भी सूर्य की ऊर्जा ही चलाती है। सूरज की गर्मी से ही पानी की विशाल मात्रा जल चक्र द्वारा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है।
3: हाँ विवेक भैया, हमारे आसपास जल तीन रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव व गैस।
1: बिल्कुल ठीक सृष्टि, जल का द्रव रूप यानी पानी और ठोस रूप यानी बर्फ और गैस मतलब भाप।
0: भैया, मुझे तो पानी का ठोस रूप यानी बर्फ अच्छा लगता है, गर्मी में राहत देने वाला, ठंडा सा।
3: मानव, जब तुझे सर्दी लगती है तब बर्फ याद नहीं आती?
4: तब मैं हूँ ना अपने बेटे को भाप देने के लिए। मेरा
5: किसे भाप दी जा रही है?
4: किसी को नहीं, अपने मानव के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं यहाँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।
5: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे विवेक बेटा, तू कब आया वरुण के यहाँ से?
1: बस अभी।
5: उनके यहाँ हैंडपंप से पानी निकला या नहीं?
1: निकला है बाबा।
5: गुड।
0: पापा, आज तो छुट्टी की शाम का मजा पार्क में चलकर लिया जाए।
3: हाँ, मेरी भी बाहर घूमने की बहुत इच्छा हो रही है पापा।
5: वेल, तो बच्चों अपनी मम्मी से भी पूछ लो।
4: ये लीजिए चाय। बच्चों, तुम अपने पापा के साथ जाओ, आज घर पर मेरी सहेली पूनम आ रही है, मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है।
1: बढ़िया बात है मम्मी, आप अपनी सहेली से बातचीत करिए, मैं और पापा और सृष्टि और मानव पार्क में जाते हैं, 8 बजे तक लौट आएंगे।
5: मैं आप लोग चलो, मैं चाय खत्म करके आता हूँ।
4: मानव का ध्यान रखना सृष्टि।

0: दीदी उधर देखो कितने सुंदर गुलाब के फूल लगे हैं ना।
1: वो गुलाब के फूल कई रंगों के हैं, देखो
2: भाई। मुझे तो चाचा नेहरू की तरह लाल रंग का गुलाब पसंद है।
1: पापा घर पर तो आप गमलों को रोज पानी डालते हैं, फिर वहाँ इतने सुंदर और बड़े फूल क्यों नहीं होते?
3: बेटा पौधों को पानी के साथ पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए ना।
1: पर पापा आप तो गमलों में खाद भी डालते हो, फिर भी फूल बड़े क्यों नहीं होते?
4: ऐसा इसलिए मानव क्योंकि हमने इन फूलों की किस्में ही नहीं लगा रखी, समझे? और वैसे भी यहाँ माली है रोज रोज की देखभाल के लिए। पापा तो सिर्फ शनिवार को ही अपने गमले देख पाते हैं।
2: और मानव यहाँ फूल छूने या तोड़ने पर माली पिटाई भी कर देता है।
1: भैया क्या यहाँ भी माली रोज पौधों को पानी देते हैं?
4: और क्या मानव, वरना पौधे मर नहीं जाएंगे।
1: पर दीदी ये सारा पानी तो मिट्टी सोख लेती है, फिर पौधों को पानी कहाँ से मिलता है?
2: अरे मानव, पौधे मिट्टी से ही जड़ों द्वारा पानी चूस लेते हैं और साथ ही पोषक तत्व भी।
1: फिर पौधों से पानी कहाँ जाता है?
3: अरे बेटा पौधे मिट्टी से पानी लेकर अपनी पत्तियों द्वारा फालतू पानी को नमी के रूप में हवा में छोड़ते हैं। बेटा जिस तरह आदमी व अन्य जीव सांसों के द्वारा हवा में नमी छोड़ते हैं, उसी प्रकार पौधे भी हवा में नमी छोड़ते हैं।
2: और मानव इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है।
1: पापा ऊपर आसमान में देखिए कितने सारे पक्षी हैं, देखिए।
3: दृष्टि देखो, पक्षी भी शाम होते ही अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगते हैं।
2: बाबा कहीं चल के बैठ लिया जाए। आइए यहाँ बैठो।
1: हाँ हाँ चलो चलो।

0: पापा पार्क में कितना अच्छा लगता है ना, ठंडी ठंडी हवा, फूलों की महक, वो चहचहाते पक्षी।
1: और सुबह सुबह पापा और मैं जब यहाँ घूमने आते हैं तब भी ऐसा ही नज़ारा होता है।
0: हाँ, तब कभी कभी यहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई दे जाती हैं, है ना पापा?
2: अरे वाह भैया, कल से आप मुझे भी अपने साथ लेकर आना।
0: अरे चल चल, स्कूल जाने के लिए तो समय पर तैयार हो नहीं पाता, सुबह 6 बजे कैसे घूमने आएगा।
3: मानव, अगर तू सुबह जल्दी उठ गया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम तुम्हें भी साथ लेकर आएंगे।
2: अच्छा पापा, कल से मैं भी जल्दी उठकर आपके साथ घूमने आऊंगा।
1: मानव, क्या सोच रहा है?
2: भैया, मैं सोच रहा था कि हवा में जल के मौजूद होने पर जैसे गिलास की बाहरी सतह गीली हो जाती है, वैसे हमारा शरीर या अन्य पदार्थ गीले क्यों नहीं होते?
0: मानव, हवा में उपस्थित वाष्प तभी द्रवित होती है जब वो हवा से कम तापमान की किसी वस्तु के संपर्क में आती है। जैसे गिलास में ठंडा पानी डालने पर गिलास की बाहरी परत गीली हो जाती है।
2: अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि जब मैं गिलास नल के पानी से भरता हूँ तब गिलास की बाहरी परत गीली क्यों नहीं होती। अच्छा भैया, क्या ये वाष्पन हमेशा होता रहता है?
1: हाँ मानव, हमेशा, कभी कम तो कभी ज्यादा।
3: पर कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब वाष्पन बिल्कुल नहीं होता बेटे।
2: वो क्यों?
1: क्योंकि वाष्पन किसी स्थान पर वायु के तापमान पर निर्भर करता है।
2: भैया, हमारी टीचर ने बताया था कि हवा की नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं और किसी भी समय हवा की अधिकतम नमी को सोखने की एक सीमा होती है।
1: अच्छा।
2: हवा की नमी धारण करने की इस अधिकतम क्षमता को हवा में मौजूद नमी की तुलना को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं।
1: क्या बात है मानव, क्या बात है, कमाल है मानव, कमाल, खीर का असर है सब। ऐसे मानव, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। अगर हवा में मौजूद नमी हवा की कुल नमी सोखने की क्षमता के बराबर हो जाए तब वाष्पन की क्रिया नहीं होती है।
2: अच्छा, जैसे मुझे भरपेट खीर मिल जाए तो फिर और कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होगी।
0: वाह मानव, पार्क की खुली हवा से तेरा दिमाग भी खुल गया लगता है।
1: भाई कभी कभी ही तो मानव समझदारी की बात करता है।
2: अच्छा, अच्छा भैया, जल चक्र में वाष्पन के बाद कौन सी क्रिया होती है?
0: वाष्पन के बाद संघनन और फिर द्रवीकरण, है ना भैया?
3: लगता है सृष्टि ने खीर के साथ बादाम ज्यादा खाए हैं।
2: मेरे हिस्से के भी खा लिए लगता है।
0: क्या पापा, आप भी मेरा मजाक उड़ाते रहते हो।
2: पापा, दीदी रोज जो इतना पढ़ती है इसीलिए इतना कुछ जानती है।
1: और तुझे हम रोज पढ़ने को कहते हैं और तू फिर भी नहीं पढ़ता।
0: हाँ, तभी तो ये मानव नासमझ है क्या दीदी।
3: अच्छा जो भी हो, ये सही है कि भाप में जल के अणु गैसीय अवस्था में होते हैं। ये भाप ऊपर उठती जाती है और फिर धीरे धीरे इसमें उपस्थित जल के अणु आपस में टकराते हैं जिससे इनकी गुप्त ऊर्जा कम होती जाती है और तब जल वाष्प के नन्हे नन्हे अणु आपस में जुड़ते जाते हैं।
0: मतलब संघनन की क्रिया आरंभ हो जाती है।
3: करेक्ट।
1: हाँ सृष्टि, लेकिन संघनन की क्रिया तब शुरू होती है जब हवा नमी से लबालब भर जाती है।
0: भैया, क्या संघनन की क्रिया धूल के कणों पर भी निर्भर करती है?
1: हाँ, धूल के कण अधिक होने पर संघनन की क्रिया तेज हो जाती है।
2: भैया, जैसे खाने की महक मेरी भूख बढ़ा देती है, ऐसे ही ना?
1: हाँ मानव, अब तो तुझे मेरी सारी बात अच्छी तरह समझ आने लगी।
0: नहीं,
1: है।
0: नहीं भैया, आपकी बात नहीं, मानव खाने की बात जल्दी समझता है।
2: भैया, संघनन की क्रिया भी क्या मेरी भूख की तरह लगातार चलती रहती है?
1: मानव, तू और तेरी भूख। नहीं मानव, ऐसा नहीं। अच्छा एक बात बता, जब तुझे तेरी आवश्यकता अनुसार खीर मिल जाएगी तब तू और कुछ खाएगा क्या? और अगर खाएगा तो क्या होगा?
2: भैया, ज्यादा खाने से तो उल्टी हो जाएगी।
1: हाँ मानव, इसी प्रकार एक निश्चित ताप पर जिसे ड्यू पॉइंट यानी ओसांग कहते हैं, इस ताप पर वर्षा की बूंदें बनना शुरू हो जाती हैं।
0: अच्छा भैया, तो आप जल चक्र की तीसरी अवस्था यानी द्रवीकरण की बात कर रहे हो, है ना?
1: सृष्टि, संघनन के द्वारा जल के अणुओं के आकार में वृद्धि होती जाती है। एक निश्चित आकार के बाद जल धरती पर वापस वर्षा के अनेक रूपों जैसे वर्षा, ओले, हिमपात के रूप में बरसता है और ये क्रिया द्रवीकरण कहलाती है।
0: भैया मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रतिवर्ष जल चक्र द्वारा लगभग 40,000 घन किलोमीटर जल धरती से वाष्पित हो संघनन व द्रवीकरण के बाद धरती पर वापस गिरता है।
1: इस प्रकार वाष्पन संघनन और द्रवीकरण द्वारा जल चक्र से जल की विशाल मात्रा धरती और हवा के मध्य चक्रित होती रहती है।
2: लेकिन भैया जल में विलय लवणों का क्या होता है?
1: मानव जल में विलय लवण वाष्पन की क्रिया में ज्यों के त्यों रहते हैं।
0: अच्छा, तो समुद्र में इसीलिए लवणता बढ़ती जाती है।
2: तो क्या धरती पर सभी जगह जल की वाष्प उपस्थित होती है?
3: मानव बेटा, अत्यंत सूखे रेगिस्तानी इलाकों को छोड़कर पृथ्वी पर हवा में जल वाष्प की मात्रा 0 से लगभग 4% तक होती है।
1: धरती के कुल शुद्ध जल का एक भाग का भी हजारवा भाग वातावरण में जल चक्र द्वारा वाष्प के रूप में मौजूद रहता है।
3: बच्चों तुम्हारी बातें पूरी हो गई हो तो अब घर चलें।
2: हाँ पापा, अंधेरा भी हो गया है।
3: मुझे डर भी लग रहा है।
0: मानव को खीर खाने की भी जल्दी हो रही होगी, है ना मानव?
2: दीदी अब तुमने खीर याद दिला ही दी है तो अब घर तो चलना ही पड़ेगा।
1: चलो भाई, मुझे पढ़ाई भी करनी है।
0: हाँ, अब तो सूर्य भी अस्त होने को है।
1: अरे सृष्टि, से याद आया, धरती और हवा के बीच का ऊष्मा वितरण सूरज की ऊर्जा के सहयोग से ही संभव हो पाता है, जिसमें जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
3: हाँ बेटा, सूर्य की गर्मी से पृथ्वी पर जल चक्र नियमित चलता रहता है।
2: और पार्क में भी गुलाब के फूल खिलते रहते हैं।
3: हाँ मानव, सूर्य ऊर्जा से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं।
2: लेकिन सूरज गर्मी भी बरसाता है।
0: मानव, धरती पर जीवन के लिए गर्मी भी तो आवश्यक है।
3: अरे चलो भाई, चलो घर चलो, शाम के ठंडे मौसम में गर्मी की बात अच्छी नहीं लगती।
2: लो अब तो घर भी आ गया है।
0: शायद नल नहीं आया, मम्मी बाहर ही खड़ी हैं।
3: अरे क्यों वसुधा, नल में पानी नहीं आया क्या?
4: हाँ जी, कोई कह रहा था कि चौराहे की टंकी में पानी नहीं भरा है इसलिए नल नहीं आएगा।
2: मम्मी पता है, आज हम पार्क में बहुत घूमे और अब तो मुझे भूख भी लग गई है।
1: मम्मी अपनी पानी की टंकी तो भरी है ना?
4: हाँ हाँ, क्यों?
1: बस नहाने की इच्छा हो रही थी।
4: तो नहा लेना बेटा, टंकी में इतना पानी तो है ही।
2: मम्मी आज मैंने वातावरण में पानी की उपस्थिति के बारे में बहुत सारी बातें जानी है।
0: हाँ मम्मी, आज विवेक भैया ने मानव को जल चक्र के बारे में बहुत कुछ बताया है।
4: तो तुमने आज पार्क में घूमने के साथ साथ अच्छी बातें भी सुनी।
2: हाँ मम्मी, और अब मैं खीर खाने की तैयारी करने जा रहा हूँ, मगर पहले नहा दूँ। कहाँ रखा है मेरा तौलिया?
4: अरे बाथरूम में, और कहाँ? अच्छा, जा अच्छा, नहा अच्छा, ले जा,
1: जा। लो मम्मी, मैं तो नहा लिया, अब जिसे नहाना हो नहा ले।
2: मम्मी मैं भी आता हूँ।
4: अरे कहाँ जा रहे हो, अभी तो आए हो तुम बाथरूम से, मैंने तुम्हारी खीर लगा दी है।
2: मम्मी मैं नल टाइट बंद करने जा रहा हूँ, अब मैंने जल के महत्व को जान लिया है।
1: चलो भाई, अब अगर मानव जल संचय करना सीख गया तो फिर सारी समस्याएं दूर।
4: मानव खीर पर टूट पड़ा है, इधर जल्दी चलो वरना खीर संचय नहीं हो पाएगी।
1: चलो भाई चलो, जल्दी चलो।

0: धरती मेरी धरती। अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 21वीं कड़ी सुन रहे थे, हवा में जल।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 एफएम के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा?
0: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे
2: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा नहीं होके दे दीदी।
0: बहुत

0: या मलेरिया, दिमागी बुखार से बची तबेगा। बस अमली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़ब जा मच्छर बन पर भारी।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। घर सूर्य घर।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: mixing in the house.
1: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
2: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
1: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
2: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
1: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
2: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
0: गच लागे म्यूजिक प्रोड्यूसर थिंकर लिरिसिस्ट अजमेर बलंबिया, म्यूजिक कंपोजर मासूम शर्मा, सिंगर मासूम शर्मा, सॉन्ग नेम इज गच लागे, ऑल योर सुरु शारदा 90.8 FM, सो लेट्स एंजॉय इट।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि

0: गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: क्या आपको पता है प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु को मां के सीने से लगाकर रखना चाहिए? ऐसा करने से नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रहता है, जो नवजात शिशु के लिए अच्छा होता है।
2: इस प्रक्रिया को कंगारू मदर केयर कहते हैं। प्रसव के बाद अस्पताल से घर वापस आने के बाद घर पर भी नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रखने के लिए उसे सीने से लगाकर रखना चाहिए।
1: कंगारू मदर केयर सीखने और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नजदीकी आशा या नर्स दीदी से संपर्क कर सकते हैं।
2: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएंगी खुशियाँ बेमिसाल।
1: शिशु की सही देखभाल से फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है, अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: क्या आपको पता है गर्भवती महिला को प्रसव के लिए समय से अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है
1: और वो भी बिल्कुल निशुल्क। गर्भवती को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के लिए 102 नंबर पर फोन करके आप एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
1: शिशु की सही देखभाल से
0: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब जिसे हम कहते हैं मूत्र, अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स हैं, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
3: Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: ओ हीरो, मिले बिना जाएगा?
1: कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.
7: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
3: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये field आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें Sharda University के Sharda School of Media, Film and Entertainment Department में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.
9: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, जान ले लूंगा।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
6: Now listen girls, please understand. First things first, I only want a shirt.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी,
1: सब ठीक बा?
2: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहला रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
3: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ

0: मम्मी का दूध पिएगी और कुछ खिलाया पिलाया तो दस्त हो सकते हैं। अगली बार मनी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
1: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारामारी थी। अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें। यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे जानते हैं? पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे? शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की। नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की। जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे जानते हैं? शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर

अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। अब सरकार द्वारा सभी RNTCP नोटिफाइड टीबी मरीजों को आर्थिक रूप से सहायता उपलब्ध है। इलाज के समाप्ति तक हर मरीज को प्रति महीने 500 रुपए उपलब्ध किए जाएंगे। इससे मरीजों की नोटिफिकेशन, इलाज अनुपालन, सही पोषण और इलाज के अंतर्गत होने वाले खर्चों में सहायता मिलेगी। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Namaste class. टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: मेरा नाम दीपिका शर्मा है। मेरे लड़के को बुखार हुआ था तो हम लोग लेके गए प्राइवेट डॉक्टर के पास। तो वहाँ पर इलाज हुआ मगर बुखार उतर नहीं रहा था, तो डॉक्टर बोले कि हमारे बस का नहीं है, लेके जाओ घर पे।
1: नमस्ते दीदी।
0: तब आशा वाली दीदी आई तो बोली क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को, तो हम बोले कि बुखार हुआ है और शरीर सूजता चला जा रहा है। तो बोले कि लेके चलोगी सरकारी हॉस्पिटल पे, तो हम लोग बोले हाँ ले चलेंगे। तो हम लोग लेके गए वहाँ पे, तो हमारा वहाँ पे इलाज हुआ। तो वहाँ से डॉक्टर बोले कि इनको बुखार मस्तक जोर है। एक दिन हम लोग वहाँ पे थे, धीरे धीरे जब इलाज हुआ तो हम लोग को विश्वास होने लगा कि हमारा बच्चा यहाँ से ठीक हो रहा है।
2: ये दस्तक अभियान के तहत आशा जाती हैं हर घर में, उनको चार प्रश्न पूछना होता है कि कोई मरीज बुखार का है कि नहीं है, बुखार के साथ किसी के ILI या सर्दी जुकाम के लक्षण वाले मरीज होते हैं उसकी लिस्ट बनाती हैं और उसके विभाग की उसकी जांच करता है, उसकी कार्रवाई करता है। स्वास्थ्य के साथ साथ और भी विभाग है, जैसे पंचायती राज है जिसमें पानी इकट्ठा न हो इसके लिए व्यवस्था करते हैं। कई अंतर विभागीय जो सहयोग कर रहे हैं उसमें पशुपालन विभाग का भी एक अहम सहयोग है कि पशु जो घर के पास रखते हैं लोग कोशिश करें कि उसको घर से बाहर रखें, तो इस काफ़ी प्रोग्राम में सहयोग हो रहा है। इसके अलावा हमारा जल निगम काम करता है इसमें, जो हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि जो सैलो हैंडपम्प हैं उसका पानी लोग न पिए, पानी से भी ये जल जनित बीमारियाँ हैं ये भी हमारे एक मस्तिष्क ज्वर का एक पार्ट होता है। इसके अलावा हमारा जो IC के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों की ना जागरूकता फैलाते हैं, तो इससे हम लोग काफ़ी इसमें क्रमशः सफलता पा रहे हैं। 3 साल से मस्तिष्क ज्वर इसमें संख्या थी उसे काफ़ी कम हुआ है और हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं हमेशा।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और TV प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.
5: Yeah. Gagan Kokri. Fateh.